और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर

आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 5 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद

0: का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है गोबर खाद का महत्व, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें गोबर खाद के महत्व की। प्राचीन युग से ही खाद का पौधों फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। ग्रामीण भाइयों, खेतों में खाद देने का मतलब है पौधों को संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना, जिससे अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों की उपलब्धि खेतों में बनी रहे। फसलों से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम खादों का इस्तेमाल खेतों में करते हैं। खाद मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करके भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ाकर उसकी शक्ति में वृद्धि करती है। खेतों में गोबर खाद देने से कई लाभ हमें प्राप्त होते हैं। मिट्टी में भौतिक सुधार होता ही है और उसमें वायु संचार भी बढ़ता है। मिट्टी में जल धारण और जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं। मिट्टी का कटाव कम होता है। भारी चिकनी मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना का सुधार होता है। गोबर खाद के रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी की क्षार विनिमय क्षमता भी बढ़ जाती है। मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। पोटेशियम और फॉस्फोरस सुपाच्य सरल यौगिकों में आ जाते हैं। पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। गोबर की खाद मिट्टी में अनेक घुलनशील कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती है। जी हाँ किसान भाइयों, इसके साथ साथ मिट्टी के जैविक गुणों में भी सुधार होता है। मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। अनेक जीवाणु मृदा से पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं। जीवाणुओं द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों द्वारा ग्रहण भी किया जाता है। गोबर खाद प्रयोग करने की विधि की अगर हम बात करें तो गोबर की खाद को गमलों और खेत में किस विधि से डालें, यह कई बातों जैसे खाद की मात्रा, खाद की प्रकृति, मिट्टी की किस्म और फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। गोबर की सड़ी हुई खाद को ही सीधे फसल बोने और गमलों और पौधों को लगाने के लिए प्रयोग करें। फसलों में बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय गमलों को मिट्टी भरते समय अच्छी तरह मिट्टी में मिलाकर पौधे रोपने से एक सप्ताह पूर्व भरें। भारी चिकनी मिट्टी में ताजा गोबर की खाद बुआई से काफी समय पहले प्रयोग करना अच्छा होता है, क्योंकि खाद से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, जल धारण क्षमता भी सुधरती है। ग्रामीण भाइयों, गोबर की खाद खेत में मोटी परत की अपेक्षा पतली डालना सदैव अच्छा रहता है। लंबे समय की फसल में समय समय पर खाद की थोड़ी मात्रा देना एक बार अधिक खाद देने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होता है। सब्जियों के खेत में 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर डालने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, खेतों में रासायनिक खादों के अधिक से अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है। इसके साथ ही मिट्टी में जल धारण क्षमता भी घटी है। इसे निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। गोबर की खाद अपनाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है और गुणवत्तापूर्ण फसल भी उपजाई जा सकती है। जी हाँ ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें गोबर खाद की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था गोबर खाद का महत्व। इस विषय में आपको बता रही थी प्रतिमा वर्मा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसुईया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसुईया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सादा जीवन उच्च विचार, संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

मानव अपने अच्छे विचारों से महान बनता है, न कि पहनावे दिखावे से। जिनमें सादगी, सरलता, विनम्रता है, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। सादा जीवन, उच्च विचार सूक्ति का तात्पर्य व्यक्तित्व से है, चरित्र से है। जिनका जीवन सरल सहज है, व्यवहार कुशलता से भरपूर हैं जो लोग, जिनकी वाणी मीठी है, स्वार्थ से परे परमार्थ करने वाले हैं, वो मनुष्य सचमुच मानवता के प्रतीक हैं। आज के दौर में लोग कृत्रिम हो गए हैं, दिखावे आडंबर में हमेशा उलझे रहते हैं। औरों से ज़्यादा पाने की लालसा उन्हें हमेशा अशांत रखती है। जीवन भर और पाने की इच्छा में वो भागते रहते हैं और ऐसे लोगों का जीवन अशांत, तनावग्रस्त, अस्वस्थ रहता है। मानव इच्छाएं तो अनंत हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो इस बात को समझता है वह सीमित संसाधन में भी प्रसन्न रहता है। संत कबीर कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात हे प्रभु, मुझे बस इतना ही दीजिए जिसमें मेरा पूरा परिवार अच्छे से रह सके और भरण पोषण हो सके। ना मैं भूखा रहूं, ना ही मेरे दरवाजे से कोई अतिथि भूखा जाए, और इससे ज़्यादा पाने की लालसा नहीं। जो सच में उच्च विचार वाले होते हैं वो सदैव शांत रहते हैं, सीधे सरल हृदय, आडंबर से दूर परहित करने वाले होते हैं। हमें उन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए जिनका जीवन सादगी भरा हुआ था। गुरु नानक देव, बापूजी, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौतम बुद्ध, ईश्वर चंद्र सागर, मदर टेरेसा जैसे कई महान संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार को आत्मसात किया और सदैव लोगों के काम आते रहे, परमार्थ करते रहे। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास आज भी मिल जाते हैं जिन्होंने सदैव सादगी को ही अपनाया और अपना जीवन सीधे सरल तरीके से व्यतीत किया। धन दौलत से परे शांतिप्रिय जीवन, जो लोग संतुष्ट होते हैं उनका जीवन ऐसा ही होता है और वो सदैव सुखी होते हैं। लेकिन जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इच्छाओं की तो कभी भी कोई सीमा नहीं होती और पाने की इच्छा उन्हें दुखी रखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि औरों के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहते हैं। मानव के उच्च विचार उसे सफलता सम्मान दिलाते हैं, और ऐसे लोग महान होते हैं जिनके विचार उच्च होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा होता है, और ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं और वो हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होती है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है, आडंबर नहीं होता है। वो सादगी पसंद होते हैं, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। तो आइए चिंतन के इन क्षणों में हम उन महापुरुषों के आदर्शों का सम्मान करते हुए उसे अपने जीवन में आत्मसात करें, सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में सादा जीवन उच्च विचार के बारे में आपको बता रही थी निर्मला तिवारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के गाए चंद भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सुमन कल्याणपुर के गाए चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी कथा। संकलन एवं वाचन अनुराधा सिंह का है।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कूटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहाँ तहाँ जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के

एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है।

इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है। फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मीलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़। डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है, और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों के विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी कथा, संकलन एवं वाचन अनुराधा सी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है प्रोटेस्ट ग्रंथि और हमारी जीवन शैली। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर राम विनोद पाठक।
1: उम्र के बाद एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। ये प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाता है, क्या कारण है और किस उम्र के बाद ये प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या शुरू हो जाती है, इसके लक्षण क्या हैं और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आयुर्वेद में प्रोस्टेट का क्या इलाज है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर राम विनोद पाठक साहब। पाठक साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये प्रोस्टेट क्या है और पुरुषों में किस उम्र के बाद इस बीमारी की समस्या शुरू हो जाती है?
2: बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक पौरुष ग्रंथि से संबंधित है जो पुरुषों में ही खास करके यह रोग पाया जाता है। यह रोग नहीं बल्कि उस ग्रंथि का विस्तारीकरण बढ़ जाना ही इसका एक लक्षण होता है। ऐसे नियंत्रित रहता है लेकिन एक विशेष उम्र के बाद, विशेष उम्र यानी ये 50 वर्ष की अवस्था के बाद, 50, 55, 60, लेकिन आज की विकृत जो रहन सहन या भोजन की व्यवस्था न समझना, मतलब स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ही इसका मुख्य कारण समझा जाए। और यह पुरुषों में विशेषकर होता है, पुरुषत्व से संबंधित ये बीमारियां हैं, खास कर जैसे वीर्य। वीर्य केवल पुरुषों में ही होता है इसलिए खास करके ये रोग यहीं से उत्पन्न होता है। और इसके एक कारण नहीं, अनेकानेक कारण है। प्रमुखतः देखा जाए तो इसका कारण अज्ञात है। आयुर्वेद आचार्यों ने, मनीषियों ने कहा है कि इसका अज्ञात कारण है, लेकिन एक उम्र विशेष के बाद ये होता ही है। क्योंकि गार्हस्थ जीवन में साधु का जीवन, सन्यासियों का जीवन या ब्रह्मचर्य का जीवन एक अलग जीवन होता है, उनमें इस तरह की विकृतियां नहीं आती हैं। लेकिन गार्हस्थ जीवन में ऐसा होता है तो एक ही प्रमुख कारण इसका कितने हैं लेकिन अज्ञात, मुख्यतः अज्ञात हैं
1: जी। यदि किसी की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्या लक्षण है ताकि हम सावधान हो जाए और इसका हम उपचार आरंभ कर दें?
2: इसका एक नहीं, कितने बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे मूत्र त्याग की अधिकता, मूत्र वेग में गतिरोध उत्पन्न होने से वह तुरंत मूत्र निष्कासन प्रारंभ हो जाता है, जैसे रिसाव कहते हैं, बूंद बूंद आना नहीं हो सकता है तो ये मुश्किल होता है संभाल पाना। साथ साथ इसमें अधिकता के कारण बेचैनी होती है और मूत्र वेग को रोका जाए तो जलन वगैरह इत्यादि होती है, या और भी गंभीर परिस्थितियां जब विकृत स्थिति हो जाती है इस ग्रंथि की तो आगे चलकर एक कैंसर वगैरह का भी रूप धारण कर लेता है। इससे इंसान को बचना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए, सजग रहना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति।
1: यदि मूत्र त्याग में कठिनाई उत्पन्न होने लग जा रही है या फिर बार बार हमें मूत्र त्याग करने की जरूरत पड़ जा रही है तो हो सकता है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ाव हो गया हो, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गया हो, तो डॉक्टर साहब इसका जो समुचित इलाज है आयुर्वेद में वो किस प्रकार किया जाता है? और खासकर हम ये बात करें कि हमारी जीवन शैली कितना हद तक प्रभावित करती है।
2: जीवन शैली पर तो इसका पूर्णतः प्रभाव होता है। आपका जीवन बिल्कुल ही संकुचित कर देता है, आप स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। ये खास करके ध्यान आकर्षण आपका यहीं पर बना रहता है। जैसे कहीं जाना हो, सफ़र में जाने से पहले सोचेंगे कि हाँ कहीं ऐसा न हो, यहाँ आप रोक नहीं सकते, इस वेग को रोक नहीं सकते, इसलिए आपका ध्यान आकर्षण होगा, ध्यान केंद्रित होगा और इस पर चिंतित आपको रहना ही पड़ेगा। इसको नियंत्रण में रखने का एक ही उपाय है, जो इंसान को सजग रखा जाए, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाए, साथ साथ कुछ विशेष

0: औषधियों का सेवन किया जाए। सबसे अच्छा यह होगा कि खान पान में खासकर ये जैसे नींबू का सेवन जरूर किया जाए, टमाटर का सेवन अधिक किया जाए, आंवले का सेवन अधिक किया जाए, क्योंकि विटामिन सी की अधिकता जब रहेगी भोजन में तो निश्चित है यह रोग लगभग नियंत्रित रहेगा। दैनिक भोजन में इसको शुमार करने की आवश्यकता है, लेते रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं जैसे सूर्योदय के बाद जो जल पान लेते हैं नींबू वहाँ ले लें, नाश्ते में भी नींबू ले लें, टमाटर का सलाद वगैरह जरूर खाएं। इससे होता है का नियंत्रित रहेगा। प्लस अगर हो सके तो त्रिफला का सेवन प्रतिदिन किया जाए, इससे नियंत्रित रहेगा। त्रिकटु कहा जाता है, त्रिकटु सौंठ पीपर मरीच, तो तीन में तीन की आवश्यकता है शरीर में प्रतिदिन। अगर इसमें और कुछ नहीं तो केवल और केवल आदि का सेवन, जिसको अदरक कहते हैं, अदरक का सेवन प्रतिदिन किया जाए, प्रचुर मात्रा में किया जाए। जैसे एक इंच की ये पतली पतली तुरियां बनाकर, मतलब अदरक की, भोजन में लिया जाए, नाश्ते में लिया जाए, रात में भी लिया जाए, तो यह बहुत हद तक नियंत्रित रहेगा।
1: और यदि औषधियों का सेवन हम करना चाहें तो कौन कौन सी औषधियाँ आयुर्वेद में कारगर है इस बीमारी से बचने के लिए या इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए?
0: इसमें आयुर्वेद सम्मत बहुत सारे शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं, जैसे गोक्षुरादि बटी, पुनर्नवादि बटी, पुनर्नवा रिष्ट भी है, साथ चंद्र प्रभा बटी, और गोक्षुरु का, मतलब गोखुरु का, ये खास करके इसका विशेष हो या धातु पौष्टिक औषधियों का विशेष सेवन किया जाए। अश्वगंधा खास करके अपने रासायनिक मतलब जीवनीय रसायन है वह, अश्वगंधा का सेवन किया जाए, शिलाजीत का सेवन किया जाए। ये सभी अगर किया जाए इसके औषधीय रूप में तो शरीर भी बलवान होगा, धातु पौष्टिकता की पूर्णता होगी, और साथ साथ कभी भी ये इनलार्जमेंट की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन तब इंसान जो इसके प्रति सोचता है जब यह रोग हो जाता है। फलतः अगर ध्यान दिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है इसको संभाल पाना, नियंत्रित रहेगा और इंसान स्वस्थ रहेगा।
1: जी, हमने अपनी जीवन शैली को काफ़ी बिगाड़ लिया है, हमारे खान पान का तरीका काफ़ी बदल गया है,
0: बिल्कुल,
1: रहने का, सोने का, जागने का, और हर समय हमें टेंशन घिरा रहता है,
0: बिल्कुल,
1: हर वक्त हम तनाव के वातावरण में जीते हैं। तो ये कितना प्रभावित करता है डॉक्टर साहब? और खान पान में जैसा आपने बताया नींबू, टमाटर, इन सब चीज़ों का यदि हम सेवन करते हैं, अदरक का सेवन करते हैं, तो ये बीमारी नियंत्रित में रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्या क्या आप कहना चाहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को कि बीमारी आप तक नहीं आए, खान पान और रहन सहन को आप संतुलित कीजिए?
0: सबसे पहले तो मैं श्रोता बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। भोजन चाहे जैसा भी हो, मिले, जिस तरह का मिले, कर लें, इसकी प्राथमिकता न दी जाए। मुझे क्या चाहिए इसका चुनाव करना चाहिए, शरीर को क्या चाहिए, शरीर को जो चाहिए उसकी प्राथमिकता अगर देंगे तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। अब उसके लिए सलाह की आवश्यकता होगी तो सलाह तो वहीं आप ले सकते हैं जो इसके जानकार हैं, अन्यथा आप इधर उधर से सलाह लेंगे तो गुमराह होते रहेंगे और जीवन फिर नारकीय स्थिति में हो जाती है, इसलिए सावधान रहें।
1: जी, तो मित्रों खान पान अपना संतुलित रखें, और जैसा आपने बताया खाने में जो घर में ही उपलब्ध है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में प्रोटेस्ट ग्रंथि और हमारी जीवन शैली के बारे में बता रहे थे डॉक्टर राम विनोद पाठक। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया, जिससे नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने कहा कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थाई उत्तर में मौजूदा गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले एक कार्गो शिप पर कब्जा कर लिया। लुटुफ नामक जहाज को सोमवार को कब्जे में ले लिया गया और नुगाल तट की ओर ले जाया गया। इस जहाज पर मोगादिशु में एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए तुर्की के हथियार, संचार और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे। चालक दल में 6 भारतीय सदस्य सवार थे। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शेष बचे हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अभी से थोड़ी देर के बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे धर्मु नायक और साथियों की आवाज़ में लोकगीत। 7:45 पर समय होगा सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता का, जिसमें आज आप भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में सुनेंगे चंद गज़लें। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से 8:30 पर।

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, खेल विज्ञानों स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की, संयोजन श्री प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:05 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश। 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल।

फिर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नग में आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार होगा हमारे राज्य केंद्र से, 4:02 पर गीतों भरी कहानी विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम की सभा में शाम 5:35 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा घर आंगन, 6:00 प्रादेशिक समाचार होगा हमारे राज्य केंद्र से, 6:02 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा खेती बारी, 6:30 पर कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा, 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे राज्य केंद्र से, 7:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग, 7:45 पर आप सुनेंगे रोजगार से जुड़ी हुई बातें कार्यक्रम उड़ान के तहत, 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से, 8:30 पर कार्यक्रम सुनेंगे आप महफिल कव्वाली, 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 10:00 हमारा फिल्मी गीतों का नियमित कार्यक्रम होगा रजनीगंधा, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में, धर्मू नायक और साथियों की आवाज़ में लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम, है स्वर सरिता, और आज आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में चंद गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गजलों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे राज्य केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की

0: बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख

0: में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृहमंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
4: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बेटी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला

0: स्मित रिसाजौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वैधता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शूशियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्धजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi chairs third high-level meeting with secretaries to Government of India, urges to break silos and adopt long-term vision for country's future. Union Home Minister Amit Shah criticizes Congress Working Committee's decision to sing only two stanzas of Vande Mataram instead of full rendition. India to host 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. BRICS Tourism Ministers to meet in Jaipur.

0: आज राज्य के सभी 24 जिलों में सरकार के खिलाफ पुतला दहन करेंगे आक्रोशित छात्र। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परीक्षा रद्द करने को बताया सोची समझी साजिश। झामुमो सांसद महुआ मांझी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। केंद्रीय संसदीय उपसमिति के सदस्यों ने रांची लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। एचईसी के पुनर्द्वार पर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया खनिज संशोधन विधेयक का विरोध। भाजपा ने विरोध को बताया राजनीतिक ड्रामा। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड, ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने के बाद छात्र राजनीति गर्मा गई है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर छात्रों से धोखा करने का आरोप लगाया है। इसकी
1: सरकार जो है झारखंड
0: के सभी जिला मुख्यालयों में सरकार का पुतला दहन किया जाएगा।
1: सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। झारखंड के तमाम छात्र नौजवान में आक्रोश है। हम झारखंड के 2400 जिला के छात्रों के से यह आह्वान करते हैं कि सरकार का मंशा आपके साथ नहीं है। उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया है, आपके आंदोलन को खत्म करने का काम किया है। इसको लेकर के झारखंड के 2400 जिला में पुतला दहन कार्यक्रम होगा।
0: इधर जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के देवेंद्र नाथ महतो ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सरकार पर मामला को दबाने का आरोप लगाया है।
2: और निर्दोष छात्र का न्याय करे और जो इस पर दागदार हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, उसका छटनी करे। अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में किसी तरीके से लिपापोती करती है, कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेपी आंदोलन के तर्क पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि सरकार ने राजनीतिक साजिश के तहत छात्रों को भ्रम में रखकर आंदोलन समाप्त कराया।
3: इस राज्य के बच्चों को नौकरियां छीन कर दूसरे राज्य के लोगों को देने का काम है। भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से यह मांग करते आई है किस प्रकार के जो नौकरियां जो बेची गई हैं झारखंड राज्य में, जो घपले किए गए हैं नौकरी के नाम पे, उसकी सीबीआई जांच हो। आखिर सरकार क्यों डरती है?
0: इस बीच झामुमो सांसद महुआ मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले ही कोर्ट के ऐसे फैसले का अंदेशा था, इसलिए निर्णय में विलंब हो रहा था। उन्होंने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
4: कुछ लोग राजनीति कर रहे थे इसको लेकर। मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया।
0: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अब किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के बाद अब वहां किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोकभवन में उद्योग संबंधित संसदीय समिति की उपसमिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा के नेतृत्व में आई ये समिति एचईसी रांची के पुनरुद्धार और वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए राज्य के दौरे पर है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा के नाला प्रखंड में झामुमो कार्यकर्ताओं ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक के विरोध में बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस विधेयक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

0: माइंस मिनरल वेस्ट स्टेट है, उनको केंद्र से इस माइंस के एवज में जो भी मिलता था वो बंद हो जाएगा और इस पैसा से राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर में कल्याणकारी योजनाओं में इस पैसा को लगा जो नहीं लग पाएगा और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चिंता और वित्तीय संकट उत्पन्न करने की जो संभावना है इस विषय लोगों ने बहुत चिंतित है। हमारे संगठन के द्वारा इस कानून के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
1: इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खनिज संशोधन अधिनियम पर शामुमो के विरोध को राजनीतिक ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकार छीनना नहीं बल्कि खनिज क्षेत्रों में पारदर्शिता और निवेश बढ़ाना है। रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलने वाले इस शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लगाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। जमशेदपुर पुलिस की एसआईटी ने एमजीएम अस्पताल के पास घेराबंदी कर 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 33 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। एसएसपी एहतेशाम वकारिब ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छिनतई की कई वारदातों को अंजाम देने की बात को स्वीकार की है।
0: जो माइंस मिनरल वेस्ट स्टेट है उनको केंद्र से इस माइंस के एवज में जो भी मिलता था वो बंद हो जाएगा और इस पैसा से राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर में कल्याण करेगी।
1: मौसम विभाग ने राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। पुणे में चल रही 16वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। एक बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड ने ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। झारखंड की संगीता कुमारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। प्रभात खबर के शब्द हैं 2022 में सीआईडी के पास थी अरुण की पूरी कुंडली, 4 साल बाद हुई गिरफ्तारी। हिंदुस्तान लिखता है राज्य के 100 अरब के रोड प्रोजेक्ट अस्वीकृत। दैनिक जागरण ने राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा के हवाले से लिखा है एचईसी नहीं होगा बंद, ये देश के लिए बहुत जरूरी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक के बाद राज्य में छात्र राजनीति गरमाई। आज राज्य के सभी 24 जिलों में सरकार के खिलाफ पुतला दहन करेंगे आक्रोशित छात्र। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने परीक्षा रद्द करने को बताया सोची समझी साजिश। झामुमो सांसद महुआ मांझी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। केंद्रीय संसदीय उपसमिति के सदस्यों ने रांची लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। एचईसी के पुनर्द्वार पर हुई चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया खनिज संशोधन विधेयक का विरोध। भाजपा ने विरोध को बताया राजनीतिक ड्रामा। और पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड, ओडिशा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप

टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे

ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम के 100.5।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो बिना देर किए चलिए आपको सुनवाते हैं यह पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है सदमा आवाज।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म मिस्टर इंडिया में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है नगीना, आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का हमारा

नज़रिया जरूर हमारे हाथ में होता है। आज की सुविचार का अर्थ बहुत गहरा है श्रोताओं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में परिस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नज़रिया। अगर हम किसी समस्या को देखकर घबरा जाएं, तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। वहीं अगर हम शांत मन में सोचें कि समाधान खोजने की कोशिश करें, तो मुश्किल का जो रास्ता है वो आसान लगने लगता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, खुद से कहिए, यह समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे कुछ सीख कर ही आगे बढ़ूंगा। सकारात्मक सोच समस्या को हमेशा खत्म नहीं करती, लेकिन समस्या का सामना करने की हमारी ताकत जरूर

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। आज ज्ञान विज्ञान में हम बात करेंगे ब्रह्मांड के नए रहस्यों के बारे में। उस दुनिया की जो हमारी पृथ्वी से इतनी विशाल है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का हिस्सा है और मिल्की वे स्वयं अरबों आकाश गंगाओं से भरे विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मांड के बारे में जितना वैज्ञानिकों को पता है उतने ही नए सवाल सामने आ जाते हैं। पहली बात, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नया ग्रह का खोज किया है जिसमें हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बेटा पिक्टोरिस डी नामक एक विशाल ब्रह्मांड ग्रह यानी कि एक्सोप्लैनेट की पहचान की है। यह बेटा पिक्टोरिस नाम का एक युवा तारे के आसपास घूमता है। इस खोज की खास बात यह है कि इस ग्रह को केवल चमकती हुई तस्वीर से नहीं पहचाना गया बल्कि वैज्ञानिकों ने इसके वातावरण में रासायनिक संकेतों को भी देखा। इसे भविष्य में दूसरे तारों और ग्रहों के अध्ययन करने के नए रास्ते खुलेंगे। अब हम बात करते हैं 3i एटलस के बारे में। इसके बारे में तो आप लोग सभी कुछ ना कुछ जरूर सुने ही होंगे। श्रोताओं, हमारे सौरमंडल में आने वाली अधिकांश वस्तुएं इसी सौरमंडल से जुड़ी होती हैं, लेकिन 3i एटलस एक अंतर तारकीय धूमकेतु है, अर्थात इसका मूल हमारे सौरमंडल के बाहर का माना जाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके रासायनिक घटकों का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों को इसमें कार्बन और ड्यूटेरियम जैसे तत्वों के अनुपात में ऐसी विशेषताएं मिली जो हमारे सौरमंडल के धूमकेतुओं से अलग हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि दूसरे तारकीय प्रणालियों में ग्रह और धूमकेतु किन किन परिस्थितियों में बनते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। यह सबसे रहस्यमय पिंड है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अध्ययन में एक बहुत प्राचीन आकाशगंगा में मौजूद लगभग 5 करोड़ सूर्यों के बराबर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। शोध के परिणाम इस संभावना की ओर संकेत करते हैं कि यह ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाशगंगा से भी पहले बना हो सकता है। अगर यह विचार आगे के अध्ययनों से मजबूत होता है तो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि शुरुआती ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल इतनी जल्दी कैसे बने। अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा की। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में है एक बड़ा विशाल ब्लैक होल जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से पाया

इस अत्यंत कठिन वातावरण के काफी पास भी धूल और पानी से जुड़े पदार्थ मौजूद रह सकते हैं। जिस तारे का अध्ययन किया गया वह सेजिटेरियस ए से लगभग 0.55 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यह खोज वैज्ञानिकों को यह समझने में भी मदद कर सकती है कि तारों के निकलने वाले पदार्थ इतनी तीव्र विकिरण वाली जगहों पर किस तरह बना और बचा रहता है। अब बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। ये है सिगार गैलेक्सी, जो करोड़ों नहीं बल्कि लाखों तारों की एक झलक दिखाता है। इसमें इससे लगभग 1.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर पर M82 को सिगार गैलेक्सी कहा जाता है। यह बहुत तेजी से नए तारों का निर्माण करने वाली आकाशगंगा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ऐसे विवरण ने देखा कि पहले दिखाई नहीं देते थे और वैज्ञानिकों को इसके भीतर लाखों अलग अलग तारों का अध्ययन करने का बेहतर अवसर मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी तेज स्टार फॉर्मेशन किसी अन्य आकाश गंगा के साथ ग्रेविटेशनल इंटीग्रेशन और मर्जर से जुड़ी हो सकती है। लिटिल रेड डॉट्स का रहस्य क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत दूर स्थित कुछ छोटे और लाल दिखाई देने वाले स्रोतों को देखा, जिसे वैज्ञानिकों ने लिटिल रेड डॉट्स नाम दिया। इसकी प्रकृति के को लेकर के लंबे समय से वैज्ञानिकों में सवाल रहे। इसमें प्रमुख विचार यह है कि इनमें से कुछ के केंद्र में बहुत बड़े ब्लैक होल्स हो सकते हैं। 2026 में हुए अध्ययन में इन वस्तुओं को संभावित विकास को समझने की दिशा में नई जानकारी मिली है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम सूर्य को लगभग 8 मिनट पुराना देखते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। और जब वैज्ञानिक करोड़ों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी आकाश गंगा को देखते हैं तो वे वास्तव में उस आकाश गंगा का बहुत पुराना रूप देख रहे होते हैं। यानी अंतरिक्ष में दूर देखना एक तरह से समय में पीछे देखना भी है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप वैज्ञानिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। वह बहुत दूर और बहुत पुराने ब्रह्मांड से आने वाले रोशनी का अध्ययन करता है। तो आइए सुनते हैं एक और प्यार।

श्रोताओं, अब आज सेहतनामा में हम बात करेंगे तुलसी के औषधीय गुण के बारे में। हमारे घर आंगन में आसानी से दिखाई देने वाले एक ऐसे पौधे की जिसका भारतीय संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा दोनों से विशेष महत्व रखता है, वो है तुलसी। तुलसी को अंग्रेजी में होली वेसल्स कहा जाता है। तुलसी की पत्तियां और अन्य भागों में कई प्राकृतिक वनस्पतिक रसायन पाए जाते हैं। इनमें यूजिनॉल जैसे यौगिक भी शामिल है जिन पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। पारंपरिक रूप से तुलसी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, खांसी, पाचन संबंधी परेशानी और तनाव जैसी सामान्य समस्याओं में किया जाता रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों में तुलसी के संभावित तनाव रोधी, सूजन कम करने वाले, रोगाणु रोधी और चयापचय संबंधी प्रभावों पर शोध हुआ है। हालांकि इससे किसी बीमारी की निश्चित दवा मानना सही नहीं होगा। मानवों में उपलब्ध शोध अभी सीमित है और बेहतर गुण वाले बड़े अध्ययनों की आवश्यकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। कुछ छोटे मानव अध्ययनों में तुलसी के सेवन से तनाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मापदंडों में सुधार के संकेत देखे गए हैं। रक्त शर्करा और चयापचय की क्रिया में भी ये लाभप्रद देखा गया है। एक अध्ययन किया गया है, मतलब छोटे तौर पे किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुलसी का इस्तेमाल रक्त शर्करा और चयापचय यानी कि बीपी वगैरह के लिए करें। हमेशा अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन के लिए तो आप वो लें, लेकिन कहा जाता है ना कि औषधीय जो भी पेड़ पौधे या फिर जो भी होते हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयोगशाला में अध्ययन में देखा गया है कि तुलसी के कुछ घटकों में विभिन्न सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध गतिविधियाँ देखी गई है। इस वजह से तुलसी

के पारंपरिक उपयोगों को लेकर वैज्ञानिकों में रुचि अभी भी बनी हुई है। तुलसी में पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक यौगिकों के में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट पर भी शोध किया गया है। कुछ छोटे अध्ययनों में रक्तचाप और लिपिड प्रोफाइल जैसे मापदंडों पर संभावित लाभ दिखाई दिए हैं, लेकिन इन परिणामों की पुष्टि के लिए बेहतर और बड़े क्लिनिक ट्रायल्स की आवश्यकता है। तुलसी की कुछ ताजी पत्तियों को साफ करके भोजन या पेय में शामिल किया जाता है और किया जाता रहा है। तुलसी की पत्तियां हर्बल चाय बनाई जाती हैं, लेकिन एक बात विशेष रूप से याद रखिए, प्राकृतिक चीज का मतलब यह नहीं है कि उसकी मात्रा जितनी अधिक हो उतना अधिक फायदेमंद होगा। तुलसी कंसेंट्रेटेड कैप्सूल एक्सट्रैक्ट और अन्य सप्लीमेंट में सामान्य पत्तियों या चाय से अलग होते हैं। इसके प्रभाव और सुरक्षा के बारे में पर्याप्त जानकारी हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है, इसे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। तुलसी का औषधीय रूप में लंबे समय तक या अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बेहतर होगा। तो आप कुछ बातों का ख्याल रखें, अगर आप रोजमर्रा में अगर तुलसी का चाय पी रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी मात्रा अगर आपको बढ़ानी है तो सबसे पहले विशेषज्ञ की सलाह लें, उसके बाद ही पढ़ाएं।

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। कॉकरोच तो सभी के घर में पनप ही जाते हैं, चाहे वो किचन हो, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, कहीं भी हो। जहाँ अगर आपके यहाँ उड़न का काम है तो कॉकरोच दिखते ही दिखते हैं। तो इसके उपाय क्या हैं? तो रात में सबसे पहले तो सिंक को सूखा रखें। कॉकरोच नमी की ओर आकर्षित होते हैं, तो बर्तन धोने के बाद सिंक के आसपास की जगह को सुखा दें। खाने के टुकड़े बिल्कुल न छोड़ें। कूड़ेदान रोज खाली करें। खाने की चीज़ें बंद करके, यानी डिब्बे में बंद करके रखें। लीकेज अगर कहीं हो रहा है तो उसे ठीक करें। दरारें अगर कहीं दिख रहे हैं, छोटी छेद बंद करें। और स्टिकी ट्रैप का यूज करें, जिससे कि कॉकरोच अगर उधर जाएं तो उसमें चिपक जाएं। या जेल बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं, जिसके कॉकरोच अगर दिखते हैं तो इससे देख करके वो भाग जाते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखें, आप कॉकरोच मुक्त अपने घर को बना सकते हैं। कार्यक्रम जोहार पलामू में आज के लिए इतना ही। हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें, और सुनिए ये प्यारा सा गीत। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा,

0: नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
1: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
0: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
1: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
1: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंती बाई और गणेश शिवदे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए।
1: जी
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
1: जी
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
1: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
1: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
1: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
1: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
1: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
1: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
1: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
1: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
1: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
1: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
1: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
1: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
1: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
1: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
1: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं, शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,

0: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए क्योंकि
1: आप हैं।
0: बिल्कुल।
1: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
0: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
1: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ। बंद रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
4: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
5: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
4: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो।

0: चलो बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जैसे?
0: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
1: बताओ बताओ।
0: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
1: ठीक है।
0: बताओ।

0: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।
2: अच्छा अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
2: अरे वाह,
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
2: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी। तो, चलिए
2: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
2: बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों अब तुम्हारी बारी है।
3: जीवन सुखद बनाएंगे,
1: जीवन सुखद बनाएंगे, हाँ जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियों

0: बंद लिफाफे में पेश करते थे।
1: लिख दिया।
2: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
3: इरशाद ग्रामी।
2: है मश्के सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह क्या बात है। है मश्के सुखन जारी,
5: चक्की की मशक्कत भी।
4: वाह
2: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी।
4: एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत। क्या बात क्या बात।
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
4: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
5: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
4: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: जी नहीं नहीं नहीं, नहीं।
5: मोहानी साहब, ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए। नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
4: क्या?
2: जी, एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
5: अरे मोहानी साहब,
2: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंदा शार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाएं।
4: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो दें।
2: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
5: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
2: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
4: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
4: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
5: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
4: आपने कुछ खाया ही नहीं?
5: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
4: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
2: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
4: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
2: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी शब्बा खैर।
2: शब्बा खैर।
5: बला की ठंड है,
2: लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है।

0: तो जनाब कंबल जी आप तशरीफ उधर ले जाए।
1: अरे हसरत तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
2: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे, उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
1: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगामे हयाते जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
2: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है।
3: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

उपहार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों, शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने

0: करण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमरीका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कूरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंता बढ़ रही है। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतूप जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। और खेलों में हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministers and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. During the meeting, the Prime Minister urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Union Home Minister Amit Shah has criticized the Congress Working Committee's decision to sing only 2 stanzas of Vande Mataram instead of the full rendition. Talking to the media, Mr. Shah said that the decision amounts to an open defiance of the law enacted by Parliament and is anti-national. Mr. Shah claimed that in 1937, the Congress had divided Vande Mataram into 2 parts for the sake of appeasement. He said that on the 150th anniversary of Vande Mataram, the central government corrected this historic mistake and gave the full song legal recognition. Mr. Shah alleged that under the leadership of Rahul Gandhi, the Congress is once again following the path of appeasement for vote bank politics.
3: I appeal to my fellow citizens to reflect upon the consequences of the past decision to permit the division of Vande Mataram into 2 parts. We have unfortunately witnessed the regrettable consequences of that decision. I therefore urge all citizens to stand united against any such course of action and to reject the politics of appeasement pursued by the Congress party.
2: India will host the 12th

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप
1: जी?
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डे गुड़िये के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी जी।
0: क्या बात है, यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी। बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है,
0: जी।
1: लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी। ट्रेन
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए। बिल्कुल
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप।
1: बस जम के इधर पूरे सवाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में।
1: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है।
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती हैं और मजा आता है। मूड तो बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं ना, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप।
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में।
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके।
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन है, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं।
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुमसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर।
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी,
0: क्या
1: प्रसिद्ध
0: बात
1: है
0: है,
1: ये।
0: और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं।
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या।
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुरीला सा गाया, और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी, जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े, मेरा शौक है जी।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, मैं आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सभी हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो उसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
0: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
1: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
0: जी
1: हम लोगों के क्षेत्र में। और धान, धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
0: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
1: रबी फसल का सीजन होता है वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
0: तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
1: उसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
0: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी, मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांजी शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जिले डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती

0: मैडम जी
1: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
0: बिल्कुल,
1: और बताइए।
0: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए
1: क्या
0: नजर
1: बात
0: आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम कटारी खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश कंजर बोल रहा हूँ मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है उसमें ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली जगह हो, सब प्रकार की जमीन में हो जाती है।
0: अच्छा, तो जो आपका ये खेत है इसके साथ साथ कुछ और भी लगाते हैं कि सिर्फ सोयाबीन ही लगी है?
1: ये बारिश के मौसम में सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल जो होती है, तिल्ली खाते हैं, वो लगाई जाती है। ये मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्लाइमेट जो है प्रदेश का, उसमें सब प्रकार की फसलें हो जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती जो मौसम है वो इतना अनुकूल है कि किसी भी प्रकार का अनाज इसमें लगाओ तो हो जाता है।
0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी, और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है, हर वर्ष बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल

0: में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए, उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए, आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर 1 फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगा ही ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी, बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही हैं?
1: हाँ मैम, गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।

0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं पर प्राग मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब
0: जी
1: बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी ऐसा आता है ना सब, वो सीख
0: जी
1: रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के वे एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जाना जाना मोरी बाजे पंजनिया, नि सा ग म प म ग म ग म प नि प नि सा प नि सा नि ध प म प ग म ग रे सा नि सा। जाना जाना मोरी बाजे पंजनिया।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रहे हैं।

0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा इतिहास की फिल्म गगा।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमोल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी। मैं तो मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी। मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं। तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए? कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी। मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी। मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था
0: तो बाकायदा कोई कोर्स
1: अभी
0: किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: जी। उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर
0: अच्छा
1: अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा
0: जी,
1: इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं? दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं,
1: जी।
0: सिलाई
1: मैम
0: कोई और करता है?
1: हम खुदे सिलाई भी करता है, खुदे कटिंग करता हूँ मैम
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी। मैम मैं खुदे करता हूँ, मेरा छोटा
0: अच्छा,
1: मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह।
1: मैं
0: इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम हम दुकान का सार रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही
0: जी
1: करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा।

0: रहता हूँ।
1: अच्छी बात है। और आसाम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
0: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामेका टेम्पल, वो भी
1: जी
0: ठीक है। और
1: जी
0: कहीं कहीं बहुत है मैम, हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है।
1: बड़ा खूबसूरत सा हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध भारती में सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है,
1: अच्छा
0: जोरहाट है, ईटानगर है और
1: जी,
0: लखनऊ है,
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
1: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
1: तो चलिए
0: जी
1: आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466 2 यानी 02240024662। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आप

0: ने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुर लेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: आईना, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ।

0: 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे अल्लाह दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मेड इन इंडिया एल्बम का नाम था बिडू का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
0: विविद भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

यूनिक, ये था एल्बम का नाम। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कैफ भोपाली ने इसे लिखा और संगीत जगजीत सिंह का।

0: मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये पेशकश अभी आप सुन रहे थे। हम किसी से कम नहीं फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।

0: पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से

0: वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं।
1: यादें फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान और महालक्ष्मी की आवाजों में प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक

0: अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बागवान फिल्म से। समीर ने इसे लिखा, आदेश श्रीवास्तव का संगीत। आज यादों की महफिल में वो गीत जहां इंतजार है तड़प है, ऐसे गीत हम आपको आज इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत बॉबी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं

0: तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉयसेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आनंद मिलन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वार्षिक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियर साइबर क्रेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार का सच केवल केंद्रीय एजेंसी ही ला सकती है सामने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, वात्सल्य और पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश। एसआईआर के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को लगेगा अंतिम विशेष शिविर। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम जोड़ने के लिए भरा जाएगा फॉर्म 8। और नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता। वर्षों से फरार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जीएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतिम रोक लगाई थी। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सीआईडी के पास भ्रष्टाचारियों की पूरी कुंडली होने के बावजूद 4 वर्षों से मामले को दबाया गया, जिसका सच सिर्फ सीबीआई जांच से ही सामने आ सकता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में विवादित अधिकारियों की तैनाती को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि डीजीपी का पद अब संवैधानिक जिम्मेदारी के बजाय राजनीतिक कृपा का पद बन गया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 योजनाओं को लेकर सरकार का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के तहत केवल बजट खर्च करना लक्ष्य नहीं है, अब हमारा पूरा ध्यान रिव्यू को सीधे एक्शन और एक्शन को धरातल पर सकारात्मक परिणामों में बदलने पर केंद्रित है।
1: रिव्यू को एक्शन में और एक्शन को आउटकम में बदलने की अब हमारी बारी है, क्योंकि रिव्यू का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं कि अब कितना काम हुआ या कितने पैसे खर्च हुए, हमें ये जानना है कि कैसे इसका बेहतर हमको आउटकम्स मिल सके। जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ हम कैसे उसको बेहतर बना सके।
0: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भरने के लिए कल से 2 दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों की आयु 1 अक्टूबर 2026 या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।
2: इनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो रहा है, नहीं मतलब हो चुका है।

0: फॉर्म 6 भरवा के अपने नाम का निबंधन कर लें। सभी को मैं एक फिर अनुरोध करता हूँ, एसएआर का रोल में नाम रहना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप थोड़ा समय निकाल के एसएआर के रोल में अपने नाम का निबंधन कर लें।
1: बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम ने रांची सदर अस्पताल का भ्रमण कर यहां की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। देश के शीर्ष 10 अस्पतालों में शामिल इस केंद्र की आयुष्मान योजना और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की टीम ने सराहना की। इस दौरे का उद्देश्य अंतर्राज्यीय स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झामुमो ने केंद्र के एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसके तहत राज्यव्यापी जनजागरण, आर्थिक नाकेबंदी और दिल्ली कूच शामिल है। महासचिव विनोद पांडे ने स्पष्ट किया कि पार्टी इसे काला कानून मानती है और इसके खिलाफ सड़क से लेकर कानूनी स्तर पर संघर्ष करेगी।
2: तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी होगी, जरूरत पड़ी तो हम देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति महोदया के पास भी जाएंगे। अगर बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य का हित चाहते हैं, इस राज्य के लोगों का हित चाहते हैं, तो फिर इस विधेयक को वापस कराने में अपना सहयोग करें, अन्य राज्यों का तुलना झारखंड से नहीं करें।
1: इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने खनिज संशोधन अधिनियम पर झामुमो की विरोध को राजनीतिक ड्रामा बताया है। उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकार छीनना नहीं बल्कि खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेश बढ़ाना है।
3: पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर कर इस कानून को जनता के पास लेकर जाने वाले, कानून में क्या प्रावधान किया गया है और शेष के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर लूट हो रही, वो जनता को हमारे कार्यकर्ता बताने वाले। झारखंड में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, वो झारखंड से लोग कोयला नहीं ले रहे हैं, वो उड़ीसा से मंगा रहे हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है झारखंड का, आप अंदाजा लगा सकते।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने उत्तर कुंजी को चुनौती देने की प्रणाली को सभी परीक्षार्थियों के लिए पूरी तरह निष्पक्ष बताया है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया है। एक रिपोर्ट।
4: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है, न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: हजारीबाग पुलिस ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर बलवंत जी उर्फ छोटू कुमार समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। वर्षों से फरार चल रहे इन आरोपियों को एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पलामू जिले के सतबरवा में पुल निर्माण स्थल पर आरोपियों ने गोलीबारी कर 2 मजदूरों को घायल कर दिया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में मामला लेवी और रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और आज राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

0: मौसम विभाग ने गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 23 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा, सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार का सच केवल केंद्रीय एजेंसी ही ला सकती है सामने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मिशन शक्ति, वात्सल्य और पोषण 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दिया निर्देश। एसआईआर के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को लगेगा अंतिम विशेष शिविर। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम जोड़ने के लिए भरा जाएगा फॉर्म 8। और नक्सल विरोधी अभियान में हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, वर्षों से फरार प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन की भीगी रातें इंसान को बाहरी दुनिया के शोर से काटकर खुद से रूबरू कराती है। ये वो जादुई वक्त है जब अंधेरा भारी नहीं लगता, बल्कि बारिश की चादर में लिपटकर हर रूह कुछ देर के लिए थमना चाहती है और सिर्फ सुनना चाहती है बाहर गिरती बूंदों की धुन और भीतर गूंजती अपनी ही खामोशी। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये संदेश लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये मेरा पहला पोस्ट है, मैं आपका विविध भारती पूरा दिन सुनता हूँ और सुबह से चालू हो जाता है हमारा रेडियो सेट। प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी गाने आते हैं सब इन्हें बहुत पसंद है और पूरा दिन इनका बहुत अच्छे से गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यार भरे संदेशों के लिए, हमें भी आपके ये संदेश पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। संदेशों में हमने एक बात कही थी अति की, तो कहते हैं ना कि इंतजार मोहब्बत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है। बहुत प्यारा लगता है वो वक्त जो किसी के इंतजार में, किसी के आने के इंतजार में गुजरता है और फिर उससे मिलने की चाह होती है। लेकिन ये कुछ मिनटों का या कुछ देर का होता है तो इंतजार अच्छा लगता है, अगर यही इंतजार बहुत घंटों का हो जाए, दिनों का हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त का हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं झुंझलाहट आ जाती है। तो क्यों ना इस बारे में बात की जाए, इंतजार क्या आपने भी किसी को करवाया है लंबा इंतजार, और क्या किसी ने आपका लंबा इंतजार किया है, उस बारे में कुछ अनुभव साझा कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके संदेश पढ़ने में। तो इंतजार करना या करवाना दोनों ही अजीब सी उलझन भी है और कष्टदायी भी है। तो आपने किसी को इंतजार करवाया हो या आपका किसी ने इंतजार किया हो बहुत लंबे समय तक, तो जरूर लिख भेजें, मैं इंतजार कर रही हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ने का। तब तक दिल ये क्या करे,

बेचारा दिल क्या करे। खुशबू फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। जब तक ये गाना प्ले हो रहा था तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके संदेश पढ़ रहे थे, यही दिल करे, और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर में बारिश बरसने के बाद रुक गई थी, लेकिन आज बारिश का मौसम बना हुआ है। आकाश में काले काले बादलों का जमघट है। बहुत खूब, तो आप इस मौसम के साथ इन गीतों का आनंद उठाइए। हमारे एक और श्रोता लिखती हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या लिखें, क्योंकि विविध भारती पर आते तो हैं लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बीपी और सरदर्द की शिकायत है, तो कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या लिखना है। लेकिन नमस्कार उन्होंने लिखा है, और हमारा भी आपको नमस्कार, और हम चाहते हैं कि आपकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और प्यारे प्यारे गीतों का साथ बना रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की याद लिखते हैं वो, कि हम खेलते थे और माँ के डांट खाने के बाद घर पर आते थे और फिर भगवान के सामने बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे। दादी की नज़र हम पर कड़ी हुआ करती थी, बहुत डर लगता था और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ज़्यादा डांटना पड़े। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंतज़ार की जब बात कही गई है तो इंतज़ार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, ये वक्त के बदलने का होता है, कामयाबी का होता है या किसी अच्छे दिन के आने का भी होता है। ये जीवन को एक मकसद देता है कि आगे कुछ बेहतर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, इंतज़ार किसी का भी हो सकता है, क्योंकि जिंदगी के हर एक पड़ाव में हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो बदलती हैं, तो कब किस समय किसका इंतज़ार है ये ज़रूर अलग अलग होता है। तो आप हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन, कुछ दिलचस्प किस्से भी छोटे छोटे यानी कि कम शब्दों में हमें भेज सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर पढ़कर सुना सकें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बेचारा दिल जरूर आएगा, ऐसा उन्हें लगा था कि ये गाना जरूर प्ले किया जाएगा। चलिए हम भी खुश हैं कि आपकी ये पसंद हमसे मेल खाती है। फिलहाल चलते हैं हम अगले गीत की तरफ।

0: बड़े दिल वाला ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन

0: कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुरीला सफर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे अनुराधा के साथ इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं इंतजार की। आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं इंतजार वाले। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कभी हम घूमने जाते हैं तो मैं और मेरा मित्र या तो मुझे काम आ जाता है तो वो इंतजार करता है, उसे बहुत काम आ जाता है तो मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा चिढ़ जरूर जाता हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे पर चिढ़ जाते हैं, पर फिर प्यार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंतजार से। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि करीबन 5 साल पहले उन्हें एक काम हुआ था, एक काम के सिलसिले में उन्हें कहीं जाना पड़ा था दफ्तर में, और किसी बड़े अधिकारी ने उन्हें 5 घंटे का इंतजार करवाया, लेकिन इंतजार किया लेकिन आखिरकार वो काम करके ही लौटे। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया है। ये हमारे गीत सुनकर इन्होंने ये पंक्तियां लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब कभी पहले बारिश होती थी जब वो छोटी थी और बाबा काफी लेट आया करते थे, उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन भी कुछ ही घर में हुआ करते थे, तो माँ काफी चिंतित हो जाती थी और भगवान के सामने बैठ जाती थी, प्रार्थना करती थी। बाबा आते थे काफी लेट भीग कर, और लेकिन उनके आने के बाद से टॉवल से पोंछ कर उन्हें और ये चाय वगैरह की सेवा में लग जाती थी, तो उस तरह की एक याद है उन्हें बारिश से रिलेटेड। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इंतजार एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया है। जिंदगी के रंग बिरंगे लिबास में इंतजार का सुराग नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होता कहाँ है। यहाँ तो हर पल दूसरे का इंतजार है, रातों को नींद का इंतजार है, सुबह को सुकून का, बारिश को मौसम का इंतजार है, मौसम को महीनों का, मुस्कुराहट को खुशी का इंतजार है, खुशी को सफलता का। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश इन्होंने लिखा है कि हर किसी को हर किसी का इंतजार है। हालांकि इंतजार किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें इंतजार तो करना पड़ता है सही वक्त का। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, किसी शादी का किस्सा लिखते हैं कि दुल्हन विदा हो ही नहीं रही थी और बहुत ज्यादा इंतजार किया, बहुत महीनों और सालों के बाद गौना हुआ और उसके बाद उनकी विदा की गई, और ये जो इंतजार है, लंबा इंतजार, उन्हें अभी तक याद है और ये रिवाज के चलते ऐसा हुआ था। जी हाँ, रीति रिवाज तो हमें फॉलो करने ही होते हैं। हमारे एक श्रोता है जो फिलीपींस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लिखते हैं कि बहुत दिनों की बारिश के बाद सूर्य देवता निकले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, हम इंतजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों का। और तो हम क्यों इंतजार करवाएं आपको अगले गीत का, सुनवाते हैं झट से अगला गीत।

देवता फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, गुलजार ने इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुरीला सफर। सुरीला सफर में आपके संदेशों का इंतजार है। जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार शब्द जब आता है तो ये मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब वो वक्त, वो लम्हे किसी के आने की इंतजार हम करते हैं, लेकिन अगर ये लम्हे और ज्यादा लंबे हो जाते हैं, घंटों महीनों के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कष्टदायी होते हैं, तकलीफ देते हैं। तो क्या आपने भी कभी किसी को इंतजार करवाया है या किसी ने आपका इंतजार किया है? ये अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और कुछ संदेश बहुत ही दिलचस्प है कि किसी को इंतजार करना करवाना कितना अलग है। जब इंतजार लंबा होता है तो यकीनन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। आपके मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, लेकिन अपने बचपन की याद की अगर बात करें तो समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार उन्हें हमेशा रहता था, और ये इंतजार बहुत ही सुख देने वाला होता था, बहुत ही आनंदित करने वाला होता था। जी हाँ, एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कोलकाता में इस वक्त हैं वो, और वहाँ पर पंडाल की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब तक बारिश होती चली जाती है तो ये जो इंतज़ार है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ये कहीं ना कहीं उलझन भरा है। तो इंतज़ार हर एक परिस्थिति में बहुत अलग होता है, कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें इंतजार रहता है कि आप हमारे गीत कब हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपका जो कमेंट है, आपके जो संदेश है, इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

चुपके चुपके, ये था फिल्म का नाम। जैसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, एस वी वर्मा की तर्ज थी। ये गीत का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। चुपके चुपके फिल्म का नाम एक बार फिर से आपको बता दें। आपके संदेशों से भर चुका है कमेंट बॉक्स और मैं देख रही हूं कि किसका संदेश पढ़ा जाए, क्योंकि एक साथ ही खूब सारे संदेश आ चुके हैं यहां पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उनका पसंदीदा गीत बज चुका है तो अब वो प्रोग्राम सुनेंगे या नहीं, लेकिन वो इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम चाहेंगे आप जरूर ये प्रोग्राम सुने और अंत तक सुने, बने रहे विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इस प्रोग्राम में इस इबारत ने तो सावन की झड़ी ही लगा दी है और खूबसूरत से गीत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं है, देवभूमि, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर जैसे तहसील में बारिश नहीं है, इंतजार हो रहा है। बिल्कुल इंतजार कीजिए और इंतजार फल देता है, बिल्कुल फल देता है। और हम अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, अगले गीत की तरफ चलेंगे। तो कुछ बताइए कौन सा गीत है, कमेंट में इंतजार रहेगा।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस समय बनारस में धूप खिली हुई है और हम लोग आ ही गए हैं अपनी सुरीली धड़कन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे श्रोता लिखते हैं कि प्यार में किसी का इंतजार करना इससे बड़ी परीक्षा और क्या हो सकती है। इस अनुभव से रूबरू हो चुका हूं मैं। 7 साल तक उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मिलने के बाद जो सुकून का अनुभव हुआ उसको बयान नहीं किया जा सकता। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हम तो कैब वाले का इंतजार करते हैं, बुक करो कैंसिल कर देता है, और बहुत जरूरी कहीं पहुंचना पड़ता है वो इंतजार जरूर करना पड़ता है, तो हार के बस पकड़ी है। इसका भी अलग ही मजा है ना। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमें सुरीला सफर का इंतजार रहता है, उसके बाद हेलो सहेली का भी इंतजार रहता है, तो विविध भारती के जितने प्रोग्राम है एक के बाद एक दूसरे का इंतजार हमें जरूर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करना सबके वश की बात नहीं होती। कोयल पूरा साल सिर्फ बसंत ऋतु का इंतजार करती है ताकि अपने सुहाने सुरीले बोलों से वादियों में अपनी आवाज घोल सके। जी हाँ। एक और श्रोता ने लिखा है जाना कहाँ है इस गीत के बारे में। बप्पी दा ने इस गाने में बिल्कुल अलग अंदाज में ऊंचे और रफ नोट्स का इस्तेमाल किया है जो कि बेहद आकर्षक है, और उनकी जो आवाज़ है गाने की बीट्स के साथ पूरा न्याय कर पाती है। साथ ही सुलक्षणा जी की आवाज़ भी अत्यंत मधुर लगती है, और इस गाने का जो आलाप है वो हिस्सा बहुत ही अलग ही जादू बिखेर देता है। जी हाँ बिल्कुल, हम भी इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक रखते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं

0: संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
2: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष, दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
3: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

0: नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे जंगली फिल्म से, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार।

चलती का नाम गाड़ी, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं, 12वीं और 13वीं तथा एक अन्य नियुक्ति को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी।
1: एक तो फास्ट ट्रैक मोड पे इस बात को सुना जाएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जल्द से जल्द न्याय किया जाए। कोर्ट का ये मंतव्य है कि 15 सितंबर तक, जो अगली डेट ऑफ हियरिंग है, उसके पहले तक सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दायर करे। कोर्ट ने बोला है कि अभी कोई टर्मिनेशन ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट्स का जो हो चुका है उस पर पास नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे है।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचईसी के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप संसदीय समिति के सदस्यों के बीच एचईसी की वर्तमान परिस्थिति और इसके पुनरुद्धार तथा भविष्य की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय उप समिति के अध्यक्ष सह सांसद तिरुचि शिवा समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। हजारीबाग पुलिस ने कटकमसांडी थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर बलवंत उर्फ छोटू कुमार समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। वर्षों से फरार चल रहे इन आरोपियों को एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस को इन उग्रवादियों की लंबे समय से तलाश थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में आज उन्होंने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की विशेष परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एसएसबी के जवानों के साथ संवाद किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: पलामू जिले के सतबरवा में पुल निर्माण स्थल पर अपराधियों ने गोलीबारी कर 2 मजदूरों को घायल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। मामला लेवी और रंगदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर

प्रखंड अंतर्गत अटका पूर्वी पंचायत लक्ष्मीबाड़ी गांव में जंगली हाथियों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। इससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाथियों के झुंड ने कल रात एक होटल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां? विविध भारती के स्टूडियो में। और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया है इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: भी रहती है, भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती, पांच भाई थे।
0: अच्छा,
1: भाई के लड़के फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, चार बहन है सबकी, सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी मैं सबसे।
0: अच्छा, और उसके अलावा दीपा जी क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ है मैडम। हम
0: हाउस वाइफ है,
1: घर में ही रहते हैं। हाँ, बच्चे है, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम।
0: अच्छा जी, किस चीज की?
1: पान छोपती है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
1: दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते।
0: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना लिए, इससे समझो न रेशम का तार भैया।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से।
0: वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हम इंदौर से।
0: इंदौर से। अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी हुई?
1: अपन महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: है। मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी आई है शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहले आएगी, पहले आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले हैं ना।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा,
0: तो चलिए सुनते हैं।
2: मेरा

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ, विविध भारती से मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आप सभी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं, है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप, बताइए।
1: पारस मणि फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आस्था हो रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना?
1: हाँ।
0: जी, तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ, मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही है?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ, वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
1: हाँ, मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से। रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत सुंदर
0: देखी।
1: सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़
1: जी,
0: मिले और राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहाँ पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है। भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी मेरा, कि वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना?

0: इंतजार करती है, दीदी आ जाएंगे उसके बाद में, फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहने हैं, तीन बहने हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
1: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती हैं,
0: मेरा इंतजार करती है, मैं एक भी नहीं जाती है।
1: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना?
0: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
1: जी
0: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
1: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और नंद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
0: मजबूर पिक्चर का सुनना है, देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
1: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाई या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी जी जी जी
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी जी ऐसे होता ही है, लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं। तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाती हैं। तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा 1 दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी जी
0: और फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति को, उनकी भी तो बहनें हैं ना, वो लोग आए राखी
1: जी
0: बांधने के लिए।
1: जी
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात ईशिका वर्मा से हो रही है
0: कहाँ से बात कर रही हैं ईशिका आप?
1: जी? उज्जैन से। हाँ,
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है। तो
1: जी
0: ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है। तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है।
0: इसी साल?
1: यस मैम,
0: अच्छा, अरे वाह,
1: फैमिली अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ईशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश
1: बिल्कुल
0: जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी? यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी।

0: जी, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम,
0: जी।
1: और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी।

0: भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी।
1: तो
0: जो एक
1: दोनों
0: दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
1: जी
0: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, तो मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
1: जी
0: यही दुख
1: जी
0: लगता है ज्यादा जी।
1: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ, उसका सामना
0: हाँ
1: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
0: शक्ति मिलती है मैम, अभी
1: जी।
0: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
1: हाँ
0: एक
1: हम
0: भैया है उनसे भी हम
1: जी,
0: अच्छे
1: हम
0: रहते हैं, खुश रहते हैं,
1: जी
0: माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
1: बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
0: जी
1: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी
0: जी
1: करते
0: मैम,
1: होंगे,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: ना
0: ध्यान रखते हैं,
1: जी।
0: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
1: ये बात तो
0: का
1: है।
0: और जाना
1: तो
0: भी पड़ता है मैम
1: और
0: फिर।
1: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
0: हाँ जी
1: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
0: जी
1: है ना
0: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
1: सही
0: ऐसा है।
1: बात
0: हाँ
1: है जी। हाँ,
0: जी
1: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
0: हाँ
1: हो
0: जी
1: पाता जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप
0: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
1: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है?
1: जी
0: तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी,
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती
0: ये तो
1: हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी,
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी।
1: और एक बेटा है प्रियम मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी है, हाँ जी, उसकी बेटी है अलिष्का, 8 साल की। बिल्कुल,
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी।
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी।
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप
1: हाँ
0: सारी मिठाइयाँ आप
1: जी,
0: बनाती हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में,
0: अरे
1: सबको मेरे
0: वाह।
1: हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 30-35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं, तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज डांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो
0: ओहो।
1: त्योहार अभी आज के लिए मेरे लिए बहुत दुखदाई रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
0: जी, वो महसूस
1: मुझे
0: कर
1: अपने
0: पा
1: भाई
0: रहे
1: की
0: हैं
1: बहुत
0: हम।
1: याद आती है। हाँ
0: जी,
1: जी,
0: लेकिन मीना जी, यही है,
1: वैसे भी,
0: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
1: हाँ
0: प्यार
1: जी,
0: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: तो
1: आप बात
0: अच्छी
1: सही
0: यादों
1: कर,
0: को
1: बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: संजो के रखिए, उनके साथ
1: हाँ
0: बिताए, जो
1: जी,
0: हंसी मजाक वाले, जो अच्छे पल हैं, उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो
1: बिल्कुल,
0: पहुंचा ही देंगे,
1: हाँ,
0: है ना? जी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: बिल्कुल।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन

0: है ऐसा,
1: हाँ
0: जैसे चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को। ये राखी।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से।
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान की।
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेज ही हो रही है। अभी गर्मी चल रही क्योंकि सितंबर जो महीना है वो उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी, फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है, वहां भी नाव शिकारी का सवारी करते हैं और
0: जी
1: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
0: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
1: हाँ
0: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना?
1: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
0: जी बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए निखत जान,
1: जी,
0: आप।
1: मैं गर्मी होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। आप तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
0: कब?
1: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
0: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
0: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार।

0: हाँ, चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही जाता।
1: तो ये जानकर
0: हाँ
1: हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
1: वो
0: अब
1: तो
0: तो
1: बस
0: साजन का ही
1: आ ही रहे हैं, सितंबर में बस आने
0: इंतजार
1: ही वाले हैं, है ना? तो
0: है।
1: अब ये
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इंतजार का जो वक्त है
0: खत्म हो गए।
1: बिल्कुल खत्म होने को ही है। तो चलिए सुनते
0: बिल्कुल।
1: हैं इस गीत को।

कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश ना हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 4002462, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और एक अन्य नियुक्ति को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। न्यायालय के फैसले के बाद सीजीएल उत्तीर्ण और सीडीपीओ के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी खुशी जाहिर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने राष्ट्रगान गाकर अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचएसी के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान पुनरुद्धार से संबंधित भविष्य की कार्य योजनाओं से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इस शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। और मौसम विज्ञान केंद्र रांची परिसर में आज अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ट्रोमीटर की स्थापना की गई। उच्च रेजोल्यूशन वर्षा मापन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके

के पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के एक माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले। हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था, धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं, उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़। चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे? 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता।

मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है। ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं। बच्चे

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट

डाउन कर देता हूँ, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूँ, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाए क्या? बहन ने पूछा। नहीं नहीं कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी क्यों? हाँ फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक छिटकी, रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी, चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं, दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाचे से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहां स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था, दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा, तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? फिर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो

0: नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे, यहां उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूं। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो। बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहां की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूं तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एक टक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?
1: जी।

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक हो उठी। मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं। तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता, जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त

मात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेटा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचएसी के पुनरुद्वार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप संसदीय समिति के सदस्यों के बीच एच

0: की वर्तमान परिस्थिति और इसके पुनरुद्धार से संबंधित भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर का आयोजन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर जामताड़ा के उदलबनी स्थित वृद्धा आश्रम में मेडिकल जांच और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर शिविर के माध्यम से वृद्ध जनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। और रांची रेल मंडल के किता सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यों के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रूप में ये अनमोल इनायत बख्शे, उसे अपना हक नहीं रब की मेहर समझकर संभाल लेना, क्योंकि दिल को मोहब्बत का आसमान हर बार नहीं मिलता।
2: मिलते

0: कभी कभी
1: ये दुनिया चाहे कितनी ही हसीन क्यों ना हो, उसकी सारी रौनक तेरी दो निगाहों के आगे फीकी पड़ जाती है। अब तो मेरी धड़कनों का पता भी इन्हीं आंखों से पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरा सारा जहां इन्हीं में आकर बस गया है। इन्हीं में सुबह की पहली किरण और इन्हीं में शाम की आखिरी रोशनी, मेरी हर राह अब इन्हीं की तरफ जाती है।

उसके आने की आहट भर से जैसे मौसम अपना मिजाज बदल लेता है, हवाएं कुछ ज्यादा ही महकने लगती हैं, फूलों को जैसे मुस्कुराने की वजह मिल जाती है, धूप भी नर्म पड़ जाती है और शाम अपने आंचल में सुनहरे रंग समेट लाती है। उसकी एक मुस्कान से दिल की वीरान बस्तियां आबाद हो उठती हैं। लगता है जैसे बहार किसी बाग में नहीं, उसके कदमों के साथ ही चली आ रही हो।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। प्रेम कभी शब्दों से नहीं, पलकों की हल्की सी झपक और नजरों की मासूम शरारत से अपना परिचय देता है। एक संकोच भरा इशारा दिल में अनगिनत ख्वाब जगा देता है, तो एक मुस्कान सारी दुनिया को भुला देती है। मिलने की चाह है, मगर साथ ही दुनिया की नजरों का लिहाज भी। यही झिझक, यही छेड़छाड़ और यही अनकहे वादे प्रेम को और भी मधुर बना देते हैं। जब दो दिल एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझने लगते हैं, तब हर खामोशी अपने आप में सबसे हसीन इजहार बन जाती है। पलकों

सामने वो हर रोज नजर आती है, पर जैसे हमारे हिस्से की नहीं। उसकी एक झलक ही दिल की धड़कनों को बदल देने के लिए काफी है। फिर भी न जाने कैसी दूरी है जो कभी मिटती ही नहीं। आंखें हर पल उसी राह पर ठहरी रहती हैं जहां उसके आने की उम्मीद बसती है। मौसम बदलते रहते हैं, दिन बीतते जाते हैं, मगर इंतजार का रंग फीका नहीं पड़ता। प्रेम का सबसे गहरा दर्द शायद यही है, जब कोई इतना करीब हो कि दिखाई दे और इतना दूर कि छू भी ना सके। तब हर दिन एक आस बन जाता है और हर रात उसी अधूरी चाह का नाम।

सामने वो हर रोज नजर आती है, पर जैसे हमारे हिस्से की नहीं। उसकी एक झलक ही दिल की धड़कनों को बदल देने के लिए काफी है। फिर भी न जाने कैसी दूरी है जो कभी मिटती ही नहीं। आंखें हर पल उसी राह पर ठहरी रहती हैं, जहां उसके आने की उम्मीद बसती है। मौसम बदलते रहते हैं, दिन बीतते जाते हैं, मगर इंतजार का रंग फीका नहीं पड़ता। प्रेम का सबसे गहरा दर्द शायद यही है, जब कोई इतना करीब हो कि दिखाई दे और इतना दूर कि छू भी ना सके। तब हर दिन एक आस बन जाता है और हर रात उसी अधूरी चाह का नाम।

अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 से आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। शाम 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बारी। शाम 6:30 पर कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा आप सुनेंगे। शाम 6:30 से

शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर रोजगार से जुड़ी बातें होंगी कार्यक्रम उड़ान के अंतर्गत। संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण का है। आज का शीर्षक है मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं कैरियर। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट सेम प्रस्तुत करेंगे। 8:30 पर कव्वाली का प्रोग्राम होगा महफिल। आज के फनकार हैं नुसरत फतेह अली खां और हमनवा।

8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम में हम पुनः शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी यह सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

आज की शाम घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में संकोच की भावना को ख़त्म करें। इसी कार्यक्रम में सुप्रिया रंजन की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से। बहने, बच्चों में शर्मिलापन और संकोच दो कारणों से होता है, एक तो पितृक कारणों से तथा दूसरा प्राकृतिक रूप से। आपने देखा होगा कि दो भाइयों में एक चंचल होता है तो दूसरा संकोची। शैशव काल में किए गए व्यवहार का बच्चों के कोरे कोमल मन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। घर तथा मोहल्ले के वातावरण का उनके प्रत्येक क्रियाकलाप से सीधा संबंध होता है, उसी के अनुरूप वे स्वयं को ढालने का प्रयत्न करते हैं। बच्चे स्वभाव से भी नकलची होते हैं। बड़ों को जो कार्य करते हुए बच्चे देखते हैं वे भी बिल्कुल वैसा ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। बड़ों को बच्चों की जिज्ञासु प्रकृति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनकी जरा सी भी उपेक्षा से वे कुंठाग्रस्त हो सकते हैं। कोई भी हीन भावना उनमें घर कर सकती है, इसलिए अधिक डांट फटकार और पिटाई से वे प्रायः हठी बन जाते हैं। फिर संकोची, यहीं से बच्चों में संकोचशील स्वभाव का उदय होता है। यही कारण है कि वे भविष्य में भी निर्भय नहीं बन पाते। बहनें, बच्चों की उत्तम शिक्षिका माँ होती हैं। माँ बच्चों की सबसे उत्तम शिक्षिका होती हैं। वो अपने व्यवहार के साथ साथ अनेकानेक उपदेशों, संदेशों व आदर्शों से बच्चे को बहुत कुछ सिखाती हैं। इतिहास साक्षी है कि शिवाजी को बचपन में दिए गए माँ जीजाबाई के उपदेशों ने उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी से वे सफलता का वर्णन कर सके। पहने, अपने बड़प्पन को बनाए रखने के लिए हर बड़ा ये चाहता है कि मैं छोटे से जो कहूँ वो उसका तुरंत पालन करे। किसी अपरिचित के आते ही बच्चे से नमस्ते करने के लिए कहना, फिर जिद करना प्रायः बच्चे को उलझन में डाल देता है। उसने आज तक जिसको देखा नहीं, अकस्मात वो उससे नमस्ते कैसे कर सकता है। बाल मस्तिष्क में ये प्रश्न अक्सर चक्कर काटने लगता है, और फिर वो किसी के भी आने पर उसके सामने जाने में संकोच प्रदर्शित करने लगता है। बच्चा सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार को जल्दी समझता है। कथनी की अपेक्षा करनी का अनुसरण करने की साधारणतया बच्चों की मुख्य वृत्ति होती है।

जिसको घर के बड़े यथोचित आदर सत्कार देते हैं, बच्चे स्वतः ही उसको सम्मान देने लगते हैं। बड़ा यदि किसी को नमस्ते करेगा तो बच्चा अपनी नकलची आदत के कारण निश्चय ही करेगा। बाद में चलकर अभिवादन करना और उसके व्यवहार का अंग बन जाता है। इसलिए बच्चों से हमें जिस व्यवहार की अपेक्षा रहती है, वो व्यवहार उनके सम्मुख मूर्त रूप में करना पड़ता है। शिक्षा व संस्कार के अभाव में संकोच। जी हाँ बहने, शिक्षा का अभाव भी बच्चों को संकोच की प्रवृत्ति की ओर बढ़ाता है। बच्चों के चारों ओर का वातावरण उसमें आदतों व संस्कारों का निर्माण करता है। ये वातावरण उनको अपने स्वजनों के सानिध्य से प्राप्त होता है। जिन परिवारों में बड़े लोगों में हीन भावना होती है, वहाँ बच्चों में ही हीन भावना फलने फूलने लगती है। पिछड़े वर्गों के लोग साधारणतया इस भावना से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं। बचपन में घर करने वाला संकोची स्वभाव भविष्य के विकास में आड़े आता है। बच्चे किशोरावस्था व तरुणावस्था में भी अपने ही मित्रों और संबंधियों के बीच संकोच प्रदर्शन करके हीन भावना के शिकार बनते चले जाते हैं। इन बच्चों को एकांत ज़्यादा प्रिय लगने लगता है। किसी के यहाँ जाने में उनको जितनी शर्म आती है, उतना ही अपने यहाँ किसी मेहमान के आने पर आती है। यहाँ तक कि अपने बराबर के साथियों के साथ भी बात करने, खेलने आदि में उनको संकोच होने लगता है। जब किसी स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी का छात्र संकोच भाव का प्रदर्शन करता है, तब ये प्रश्न अवश्य उठता है कि उसका मात्र प्रथम फर्स्ट आना क्या इसके भावी जीवन को सफल बना सकेगा? आखिर वो किसी भी साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करेगा? ऐसे अनेक छात्र तो प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी उसको व्यक्त करने में अपने को लाचार महसूस करते हैं। इसके पीछे उनका संकोचशील स्वभाव सक्रिय रहता है। उनमें प्रायः ये भाव जागृत हो जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है अथवा नहीं। ये प्रश्न उनको अपना मुंह बंद रखने के लिए विवश कर देता है। इसके पीछे भी बचपन में गलत उत्तर देने के कारण हुई पिटाई या डांट फटकार हो सकती है, अथवा छोटी छोटी गलतियों के लिए घर बाहर उड़ाया गया उनका मजाक भी इसका कारण हो सकता है। संकोच दूर करना ज़रूरी है दोस्त बहने। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वे संकोच से मुक्त रहें, अन्यथा सफलता उनके लिए दूर की चीज़ बनकर रह जाएगी। इसलिए बाल्यावस्था से ही कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर समस्या के मूल को नष्ट किया जा सकता है। बच्चों को बात बात पर टोकना नहीं चाहिए। बार बार टोकने के कारण बाद में बच्चों पर उसका असर नहीं होता या वे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से डराना या धमकाना बच्चों के विकास के लिए उचित नहीं है। भय उसके दब्बूपन का कारण बनता है। चंचलता तो बच्चों का आभूषण है जिससे उनका विकास होता है। उन्हें चंचल होने दीजिए। बच्चों की समस्याओं को समय समय पर ज्ञात करके उनका समाधान करना चाहिए, अन्यथा वे उनके बोझ से दबकर अपने अंदर अंदर घुटते रहेंगे। छोटी मोटी गलती के लिए बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं। पिटाई को भी वे साधारण सी बात समझने लगते हैं। धैर्यपूर्वक कोई बात समझाने का बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए बुद्धू, नकारा आदि शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को कभी कोसना नहीं चाहिए। कैसा बुद्धिहीन बच्चा पल्ले पड़ गया है, ऐसे वाक्य बच्चों के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। वे हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। सामान्यतः अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मोनू तुमसे कितना अच्छा है, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, ऐसी तुलना आपके बच्चे के ऊपर गलत असर डाल सकती है। वो दूसरे बच्चों की तुलना में आपको अपने को हीन समझने लगता है। घर के सभी बच्चों को माता पिता द्वारा प्यार मिलना चाहिए। यदि आप अनजाने में एक को अधिक और दूसरे को कम प्यार करेंगे तो निश्चय ही दूसरे के बारे में आपका दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण बन जाएगा और उसके मन में स्वयं के प्रति उदासीनता का भाव पनपने लगेगा।

बाप का पूरा प्यार मिलना चाहिए, परंतु आवश्यकता से अधिक लाड नहीं करना चाहिए। जिन परिवारों में माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, बच्चों को अपेक्षित प्यार नहीं मिल पाता। भाग दौड़ के कारण जहाँ माँ बाप का स्वभाव चिड़चिड़ा

करें तथा प्रेरक बाल साहित्य उपलब्ध करवाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समय दें और उनके साथ खेल कूद कर उनकी अभिरुचियों का विकास करें, तभी उनका संकोच दूर होगा और वो जीवन में सफल होंगे। इसलिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप इस पर ज़रूर गौर करें। तो चलिए बहनें, ये हुई कुछ बातें, अब आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: अब आइए बहने सुप्रिया रंजन की वार्ता सुनते हैं। विषय है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी पार प्रावधान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अधिवक्ता सुप्रिया रंजन जिला पलामू सत्र न्यायालय डाल्टनगंज से बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे वकील के रूप में प्रैक्टिस करती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं महिलाओं, बच्चों और समाज के वंचित वर्गों से जुड़ी कानूनी मामलों पर कार्य कर रही हूँ। आज आकाशवाणी दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम कानूनी जागरूकता जाने महिलाओं से संबंधित कानून में मैं आप सभी को आपके अधिकारों, उपलब्ध कानूनी उपायों और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में सरल भाषा में जानकारी दूंगी। हमारा उद्देश्य है कि हम हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं, अपने अधिकारों को समझें, कानूनी सहायता का सही उपयोग करें और उसके अन्याय के विरुद्ध आत्मविश्वास के साथ आगे देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज मैं आप सभी के सामने महिलाओं से संबंधित कानूनी जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। हमारा संविधान हर महिला को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर भी आज कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होने के कारण अन्याय और शोषण का शिकार बन जाती हैं। बहनों, महिलाएं समाज की आधारशिला हैं। एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में वे परिवार और समाज को मजबूत बनाती हैं। ऐसे में कानूनी जागरूकता सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि घरेलू हिंसा, दहेज, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून बने हुए हैं। अगर कोई महिला हिंसा का शिकार होती हैं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, महिला हेल्पलाइन पर कॉल कर सकती हैं और न्यायालय की शरण ले सकती हैं। एक समय था जब महिलाओं की आवाज़ घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी जाती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज की नारी अब सिर्फ सहन नहीं करती है बल्कि अपने अधिकारों को पहचानती है और उनके लिए खड़ी रहती है। परंतु यह शक्ति तभी आती है जब हमें अपने कानूनों की जानकारी होती है। आज बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसलिए अन्याय सहती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहनों, मुझे आपसे पूछना है कि अगर आप चुप रहेंगी तो न्याय कौन मांगेगा? सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कई सुरक्षा कानून बनाए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तब तक ये कानून सिर्फ कागजों में बने रह जाएंगे। बहनों, हम सब मेहनत करती हैं, घर संभालती हैं, परिवार को जोड़कर रखती हैं, लेकिन कई बार हमारे समाज में हमारे साथ गलत होता रहता है। कभी घर में मारपीट, कभी दहेज की मांग, कभी गाली गलौज, कभी जमीन या संपत्ति में हिस्सा न देना, कभी बाहर किसी का छेड़ना या साइबर क्राइम द्वारा परेशान करना। याद रखिए, यह सब अपराध है और इसके खिलाफ हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। हमारे संविधान ने हमें कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, शिक्षा और रोजगार का अधिकार। अगर किसी महिला को उसके घर में मारा पीटा जाए, तंग किया जाए, तो वह 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, 112 पुलिस नंबर या नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। कानून कहता है दहेज मांगना अपराध है, घरेलू हिंसा अपराध है, किसी महिला को सड़क या खेत में छेड़ना अपराध है, मोबाइल पर धोखा देना अपराध है, मोबाइल पर किसी का वीडियो गलत तरीके से वायरल करना अपराध है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधवा पेंशन, सुकन्या समृद्धि योजना। अर्थात मैं यह कहना चाहूँगी, जागरूक महिला ही सशक्त महिला है और सशक्त महिला ही परिवार और समाज को बदल सकती हैं। श्रोताओं, मैं आपको आज कानूनी तरीके को कैसे अपने जीवन में अमल लाएं और उसके क्या क्या तरीका है ये बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम की। घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शारीरिक हिंसा नहीं है बल्कि मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक शोषण, भावनात्मक अत्याचार और सामाजिक अपमान, इन सभी को अपराध की श्रेणी में ही माना जाता है। इस कानून के तहत महिला को पति या ससुराल से होने वाले हिंसा को रोकने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे प्रोटेक्शन

0: ऑर्डर कहते हैं। महिला को उसके घर में रहने का अधिकार दिया जाता है, जिसे रेसिडेंस ऑर्डर कहते हैं। महिला और बच्चों के लिए खर्च के लिए प्रावधान है, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। काउंसिलिंग और शेल्टर होम की भी सुविधा है। यदि किसी महिला को घर में किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़े, तो वह महिला हेल्पलाइन 181 में कॉल कर सकती हैं, अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर आप चाहती हैं सूचना को गुप्त रखकर आपके काम को आगे बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे ये भी होता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी आपसे तुरंत संपर्क करते हैं, थाना में भी आप कॉल कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। दूसरा बड़ा कानून है दहेज निषेध अधिनियम। भारत में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक गंभीर अपराध है। अगर किसी महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाए, शादी टूटने की धमकी दी जाए, तो वह कानून का मदद ले सकती है। इस कानून में कैद, भारी जुर्माना और दहेज की वस्तुओं का वापस मिलना सब शामिल होता है। महिला को यह जानना चाहिए कि दहेज मांगना शुरू से ही अपराध है, चाहे वह शादी में हो या शादी के बाद हो। 498A IPC के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पति या ससुराल द्वारा क्रूरता के अंतर्गत इस सेक्शन में काम होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसमें महिला को मारपीट, दहेज की मांग, मानसिक उत्पीड़न या आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इसके अंतर्गत आता है। इस धारा के तहत आप FIR दर्ज करा सकती हैं। यह कठोर दंडनीय अपराध है, जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पॉश एक्ट, ये 2013 में आया है। महिलाएं अक्सर गांव में या शहर में अपने घर की जीविका चलाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, दो चार पैसे कमाती हैं, ताकि उनके घर को, उनके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। मगर जब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न ही होने लगे, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें होने लगे, गंदे इशारे करने लगे वहाँ के अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी, इशारों भरी बातें करने लगे, उनके गंदी संदी फोटो भेजने लगे, तो वहाँ का माहौल असुरक्षित हो जाता है। इन सभी की शिकायत के लिए महिला को शिकायत दर्ज करना चाहिए, जो 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। और शिकायत मिलने पर संस्था को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होती है। इसके लिए हर कंपनी या समिति के लिए ICC एक आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है।
1: अभी आप सुन रहे थे सुक्रिया रंजन की वार्ता। विषय था महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। और इसी के साथ घर आंगन कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं के नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जागरूकता के लिए 23 अगस्त को रांची में एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार में विशेषज्ञ बिल्डरों, प्रमोटरों, होम बायर्स और बैंक प्रतिनिधियों को परियोजना पंजीकरण, अधिकार दायित्व, वित्तीय प्रबंधन और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अंतिम विशेष शिविर लगाया जाएगा। शिविर में नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और परिवार का नाम एक ही केंद्र पर लाने के लिए फॉर्म 8 भरे जाएंगे। पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज 4 थाना भवनों के निर्माण की आधारशिला रखी गई। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल और पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने संयुक्त रूप से निर्माण कार्य का शिलान्यास

0: धनबाद के कोयला नगर स्थित जुबली हॉल में आज अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की ओर से मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मजदूरों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर प्रस्तुत है ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: तमाम ग्रामीण भाई बहनों को प्रतिमा वर्मा का नमस्कार
1: और साथ ही रागनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में सबसे पहले बातें जैविक खेती की। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए और आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सीमांत और छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्यधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की जितनी सारी समस्याएं हैं, इसे निपटने के लिए गत वर्षों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर खेती करने पर बल दिया जा रहा है।
1: आपने सही कहा, और इस पद्धति से खेती करने में शरीर तुलनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहता है, औसत आयु भी बढ़ती है। कीटनाशक और खाद का प्रयोग खेती में करने से फसल जहरीला होता है। जैविक खेती से फसल स्वस्थ और जल्दी खराब भी नहीं होता है।
0: इसके कई लाभ भी हैं। हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।
1: और इसके साथ ही जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। किसान भाइयों, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। भूमि के जल स्तर में वृद्धि क्रियाशील होता है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में भी कमी आती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरकता और कृषकों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में पूरी तरह सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभप्रद है।
1: और जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है और इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे भी उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक भाई अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
0: आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह बहुत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धतियां को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों,

0: और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बगैर समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीने की राह दिखा सकेगी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में हम बातें कर रहे थे जैविक खेती की,
1: और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए भेंट वार्ता।
0: जी हाँ किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान मुकेश कुमार प्रजापति से। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं मुकेश कुमार प्रजापति, जमुने पंचायत के किसान मित्र हूँ।
0: मुकेश जी, आप सबसे पहले बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप क्या कहें।
2: पीएम किसान सम्मान निधि ये बहुत अच्छा ही किसानों के लिए पहल है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को बहुत अच्छा सहायता मिल रहा है, जिससे किसान समय पर बीज लेकर अपना समय समय पर अपना खाद बीज दवा का प्रयोग कर लेते हैं।
0: अच्छा, इस योजना से आप कब जुड़े?
2: इस योजना से हम 2018 से ही जुड़े।
0: अच्छा, आप ग्राम जमुने के कृषक मित्र हैं। आप अब तक कितने कृषकों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास कर चुके हैं?
2: लगभग 400 से 500 किसान को इसकी सूचना और जोड़ने का प्रयास किया।
0: बहुत अच्छा। और छोटे किसानों के लिए ये योजना अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है, क्या कहना चाहेंगे?
2: इससे मदद मिल जाते हैं किसानों को, जिससे समय समय पर मतलब अपना जो छोटे किसान थे जो कर्ज लेकर जो करते थे खेतीबाड़ी, वो इस योजना के तहत किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है।
0: किस तरह का फायदा हो?
2: खेतीबाड़ी में फायदा होते हैं, खेतीबाड़ी करने से के लिए दवा बीज और खाद का।
0: छोटे किसानों के लिए ये योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है, क्या कहना चाहेंगे?
2: छोटे किसानों के लिए मतलब जो किसान छोटे किसान थे जो कि अपने गांव में बड़े किसान से इंटरेस्ट पर लेकर जो खेती करते थे और उसे न पैदा होने पर चुका पाने के कारण अपनी आर्थिक तंगी में आ जाते थे, तो इससे पीएम किसान के तहत इनको समय पर पैसा मिल जाते हैं और खाद बीज वगैरह अपना समय से निकाल लेते हैं ये पीएम सम्मान निधि से।
0: ये योजना बहुत उपयोगी साबित
2: हो, ये योजना बहुत कारगर है, उपयोगी है।
0: अगर हमारे किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा?
2: यदि किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना है तो वे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पीएम सम्मान निधि प्रज्ञा केंद्र में जाकर फॉर्म भरना पड़ता है, इसके बाद इसका मतलब हो जाता है।
0: अच्छा, किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है?
2: पीएम किसान के लिए सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज जमीन का रसीद देना होता है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो।
0: रकम का भुगतान कैसे किया जाता है?
2: रकम का भुगतान बैंक के द्वारा होता है, 4 मंथ पे 2000 आते हैं।
0: आप पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़कर हम अपने में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिससे कि समय पर बीज ले लेते हैं, समय पर खाद लेने की पैसा तंगी आ जाता है तो वो पीएम किसान के तहत हमें समय पर मिल जाते हैं और दवा का भी प्रयोग कर लेते हैं उससे।
0: इसके अलावा और आपने कृषि के क्षेत्र में किन योजनाओं का लाभ लिया है?
2: अभी अभी हम कृषि के क्षेत्र में पशुपालन से मतलब मुर्गी पालन के लिए शेड और मुर्गी पालन का चूजा वगैरह मिला, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का भी फॉर्म भरे हैं, और समय समय पर आत्मा हमें सहयोग करता है, बीज समय पर देता है और उससे मतलब गांव में किसानों को वितरित करते हैं और जागरूक करते हैं, पौधा किस तरह से लगाना चाहिए ये सब भी बताते हैं, और क्या कमी है क्या गलतियां करते हैं किसान उसको बताना होता है हमें,
0: जिसकी वजह से उनको हानि हो जाती है।
2: जी,
0: कुल मिलाकर आपने बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिया हुआ।
2: जी,
0: किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं?
2: किसान क्रेडिट कार्ड ये किसान को बैंक समय समय पर लोन देती है, ठीक है, और वे खेतीबाड़ी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मतलब होता है कि खेतीबाड़ी के सहयोग के लिए लोन देती है, जिससे वो किसान मतलब खेती करके फिर पैसा वापस लौटा दें, इससे अच्छी सहयोग हो जाता है।
0: किसान क्रेडिट कार्ड योजना को आप कैसा मानते हैं?
2: किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा है, ये किसानों को बहुत
0: मदद
2: करती है। हम किसान क्रेडिट कार्ड से 2014 से जुड़े हुए हैं। इससे हम 2014 में जब किसान क्रेडिट कार्ड बनाया तो इससे हम अपने खेती में लगाया और बहुत अच्छा ही मतलब अपना उन्नति किया।
0: रकम वापसी की बात हमेशा आती है तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: बैंक जब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन देती है तो वो उसे लोन वापस लौटाना चाहिए, इसलिए कि आप क्रेडिट में लिखा हुआ है कि किसान मतलब किसान के लिए क्रेडिट आचरण जो होता है वो आचरण बनाए।

0: रखने के लिए, मतलब आप लोन दीजिए फिर दूसरा ले लीजिए, समय पर दे दीजिए समय पर ले लीजिए। किसान क्रेडिट का मतलब ये होता है जिससे किसानों को मतलब समय समय
1: क्रेडिट
0: पर।
1: पर
0: हाँ
1: लोन मिलता है
0: जी,
1: ना। थोड़ी सी बातें हम खेती बाड़ी के बारे में भी कर लें।
0: प्रोर नेनुआ जिसे कहते हैं,
1: हाँ
0: नेनुआ करेली और अभी झिंगी भी लगाए हैं, कोहड़ा भी लगाए हैं, ये सब 8-10 तरह के हम मतलब फसल लगाए
1: फसल
0: हैं
1: लगाए हुए हैं।
0: जी।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात बताइए। आप अब क्या करना चाहते
0: अब हम पशुपालन के क्षेत्र में
1: आगे आना चाहते
0: हम आगे आएंगे, कृषि तो करेंगे
1: हैं?
0: ही और आगे करेंगे पशुपालन में
1: अच्छा,
0: जिससे अच्छा आय प्राप्त हो।
1: उसके रकम को आप इसमें जोड़ना चाहेंगे
0: जी
1: पशुपालन में?
0: जी सम्मान निधि को हम पशुपालन में जोड़ेंगे और मुर्गी पालन भी करेंगे इससे।
1: मुकेश जी, कुछ देर पहले आप आत्मा की बात कर रहे थे,
0: जी
1: आत्मा से जुड़े हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से, आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर चुके हैं वहाँ से?
0: आत्मा से हम किसान मित्र हैं, यहाँ से हमारे ऑफिस से मतलब सभी किसान के लिए जो जो फॉर्म भर देते हैं किसान लोग, उन किसानों के लिए समय पर हम बीज उपलब्ध करा देते हैं।
1: अच्छा।
0: घर पे जाके हम उन्हें बीज उपलब्ध कराते हैं, जैसे मक्का हो, अरहर हो, धान, उड़द, सरसों, चना आदि उपलब्ध कराते हैं समय पर।
1: जी हाँ किसान भाइयों, छोटे और सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना उपयोगी साबित हुई है। बुआई के ठीक पहले संकट जूझने वाले किसानों को नकदी बीज, खाद और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों में सुविधा हो रही है। आवश्यकता है इस योजना से अधिक कृषकों को जुड़ने की और लाभ लेने की। किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आज हम विस्तृत बातें कर रहे थे पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड के जमुने के कृषक मित्र मुकेश कुमार प्रजापति जी से।
2: किसान भाइयों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए पलामू जिला के सफल किसान से की गई भेंट वार्ता। आज हमारे साथ हैं पाटन प्रखंड के ग्राम सहदेवा जिला पलामू के सफल किसान शंकर कुमार मेहता। सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: अभी आप किस किस फसल की खेती कर रहे हैं?
3: अभी धान और मक्का का खेती कर रहे हैं, जिसमें मक्का है, इसके बाद सब्जियां हैं।
2: हाँ, सब्जी में क्या क्या उगाए हैं अभी आप?
3: सब्जी में अभी भिंडी है, नेनुआ है, करेला है,
2: अच्छा,
3: यही सब है सब्जियां में अभी।
2: मक्का की क्या स्थिति है और उसमें क्या क्या बीमारियां लगती हैं?
3: मक्का का स्थिति अभी ठीक है, उसमें बीमारियां पता उसका पीलापन हो जाता है और धावा टाइप का हो जाता है, तो उसमें हम लोग कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं।
2: क्या करते हैं घरेलू उपचार में?
3: घरेलू उपचार राख छींटते हैं, राख हो गया उसका छिड़काव करते हैं। हम लोग घर बना करके अधिकतर जैविक खाद का यूज करते हैं इसी तरह का, और जो मान लो राख छींटने से नहीं ठीक होता है उसको मार्केट से दवा मंगवा के छिड़काव करते हैं।
2: और सब्जियों में जो आप घरेलू उपचार क्या करते हैं, जो सब्जी में अगर कीड़ा लगता है उसके?
3: घरेलू उपचार हम लोग के पास सब्जियों के लिए वही है, राख है, हम लोग कीड़ा लगता है राख ही डाल देते हैं।
2: अच्छा, सब्जी में आप करेली, नेनुआ सब कितने में आप लगाए हैं?
3: भिंडी लगभग 4 डिसमिल में है, और नेनुआ भी 1 कट्ठा के लगभग है, और करेला आधा कट्ठा 2 डिसमिल के लगभग में ये खेती है।
2: अच्छा, इन सब सब्जियों की देख रेख आप कैसे करते हैं?
3: देख रेख वही, उसको समय से उसको कोड़ते हैं, जो घास है घास नहीं लगते हैं, कीड़ा उगरा के देखते हैं, साप्ताहिक के राह का छिड़काव करते ही रहते हैं जो कीड़ा ना लगे, घरेलू उपचार यही सब करते हैं। खैर पतवार निकलता है तो ये निराई कोड़ाई वगैरह करते हैं।
2: इसके अलावा आपने और क्या क्या चीज लगाए हैं?
3: इसके अलावा मैंने बहुत ही पौधा लगाए हैं,
2: जैसे
3: जैसे अंजीर का फल हो गया, उसका भी पौधा है मेरे पास, लीची है,
2: अच्छा,
3: जामुन है, कटहल है, पपीता है, नारियल है, और नाशपाती है, शरीफा भी है, दालचीनी, और गरम मसाला गोलकी जो होता है
2: हाँ,
3: वो भी मैंने लगाया है।
2: अच्छा, आपने तो बहुत सारे चीजें लगाई हैं।
3: हाँ लगाया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा विकसित पौधा अंजीर, लीची,
2: हाँ,
3: नाशपाती,
2: हाँ,
3: पपीता, ये सब ठीक ठाक है। हम लोग का पलामू का मिट्टी जैसे बोला जाता था ये सब फल नहीं होगा, इसीलिए मैं ट्राई किया लगाकर,
2: अच्छा,
3: तो विकास तो हमको लगा, फल भी दिया हुआ है, फल है अभी।
2: अच्छा, इसकी खेती में क्या संभावना आपको नजर आती है?
3: इस खेती में संभावना हमको यही आती है, अभी तो मान ले 1-2 पौधा लगाए हैं, जिस तरह से अभी विकास है, अगर इस तरह से हम इसको ज्यादा मात्रा में लगाए तो हमको इसे हम लोग किसान को आगे बढ़ने की हमको राहत मिलेगा, घर परिवार चलेगा, यही सब।
2: अंजीर का अधिक उत्पादन के लिए आप क्या क्या करते हैं और इसकी देख रेख आप कैसे करते हैं?
3: अंजीर के पौधा के लिए ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता है।
2: अच्छा।
3: हम लोग का इसका पौधा अनेकों

0: करके कंपनी वाले घूमते हैं गांव में, तो उन्हीं से मैंने आज के 2 साल पहले पौधा लिया था अंजीर का। उसको अंजीर लगाने का नियम है जे अंजीर लगाने से पहले 1-1.5 माह पहले उसका दर मार देना रहता है। दर मारने से फायदा ये होता है जो दर और उसका गहराई कम से कम 1.5 फीट उसको मार करके छोड़ देते हैं और पौधा मिट्टी जो अंदर है लगाने से फूल का टाइप का हो जाता है। जो लगाते हैं तो उसका शोर नीचे जमीन मिट्टी को ज्यादा जोड़ को असर ना करे, जहाँ थोड़ा मने गीला ढीला रहेगा तो जल्दी पकड़ता है जड़।
1: और इसमें आप खाद डालते हैं?
0: हाँ, खाद घर का खाद डालते हैं, जैविक खाद डालते हैं।
1: लीची की देखरेख आप कैसे करते हैं?
0: लीची का उसी तरह देखरेख करते हैं, उसको समय से
1: आप अंजीर का देख
0: करते हैं।
1: और आप बोले कि पपीता भी लगाए हैं, नाशपाती भी लगाए हैं, इन सब फलों की देखरेख आप उसी तरह करते हैं?
0: हाँ, उसी तरह सब करते हैं।
1: किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई गई है, इसका लाभ आपने लिया है?
0: जी, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है।
1: इसको कैसा मानते हैं आप?
0: किसान क्रेडिट कार्ड किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छा है।
1: अच्छा।
0: बहुत सुविधा है। किसान क्रेडिट कार्ड लेने से हमको खेती करने के लिए सहयोग हो जाता है, इससे हमको आगे बढ़ने की रास्ता देखता है। और KCC अकाउंट है, ये योजना बहुत सही चीज है। इसको समय से सिर्फ ट्रांजैक्शन करना है, अगर समय से आप ट्रांजैक्शन लेन देन करते हैं तो KCC के मेरे हिसाब से कोई इसका इंटरेस्ट नहीं है।
1: इसको कैसा मानते हैं आप?
0: बहुत अच्छा।
1: अभी तक आपने KCC से कितना लाभ लिया है?
0: अभी तो हमको नवम्बर महीना 2021 में KCC प्राप्त हुआ है।
1: अच्छा, उससे आप किस किस फसल का उत्पादन ले रहे हैं?
0: उससे अभी मक्का है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है, और धान का भी बीज वगैरह किए थे बोरिंग के द्वारा, कुआं के द्वारा।
1: किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली, और अगर हमारे किसान भाई इससे जुड़ना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे?
0: किसान क्रेडिट कार्ड का जानकारी बहुते कोई मेरा गांव में भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया है, तो उन लोग बोलता था ये किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान है, लोन है, तो इसको हम नहीं समझ पाते थे किसान क्रेडिट है क्या चीज। तो इसको जानकारी लेने के लिए ब्लॉक पहुंचे।
1: अच्छा।
0: अपना ब्लॉक में जा करके अपना ATM BTM जो होते हैं उनसे मिले, तो उनसे जानकारी लिए। एक कृषि मित्र है मिराल पंचायत का, तो उनसे भी मिले।
1: अच्छा।
0: तो हमको पूरा डिटेल में बताए इसके बारे में, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना प्रक्रिया लगेगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद रजिस्टर 2, और KCC का फॉर्म होता है, उस पर मुखिया कर्मचारी COCI का सिग्नेचर होता है, और बंसावली के तहत किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है। मेरा हिस्सा में जितना जमीन पड़ेगा उसके अनुसार से KCC को स्वीकृति किया जाता है, पास होता है।
1: अगर हमारे किसान भाई इसे जुड़ना चाहेंगे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश जुड़ना चाहेंगे तो उन लोग को संदेश देना यही चाहेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान भाई नहीं लिए हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लें। किसान के लिए बहुत ही राहत KCC रखता है, सहयोग करता है, मदद करता है।
1: मनरेगा से आपने लाभ लिया है?
0: मनरेगा से मेड़बंदी वगैरह करवाए थे, अरबंध जिसको बोला जाता है।
1: कब करवाए हैं आप?
0: ये तो 2020 में करवाए थे।
1: उससे आपको क्या फायदा मिला?
0: उससे फायदा मेड़बंदी कराने से फायदे है, जिससे जो टाण जमीन जो होता है, टाण टाइप का जो पानी गिरे और ढरक जब पानी नहीं रोकता है, तो उसको किया जाता है पानी को रोकाव के लिए। जो पानी रोके, पानी का लेयर ऊपर जब रुके तो जमीन भींच कर लेयर ऊपर आए, इसके लिए मेड़बंदी का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद
1: इससे फायदा है आपको?
0: फायदा है, सभी किसान भाई को टाण पर मेड़बंदी करवाना चाहिए।
1: आप लोग जैविक खेती करते हैं या रासायनिक खेती?
0: हम लोग अधिकतर जैविक खेती करते हैं, और उसमें रासायनिक भी हम लोग यूज करते हैं।
1: आप किसको अच्छा मानते हैं, जैविक या रासायनिक को?
0: जैविक को, सेहत के लिए जैविक बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
1: पशुपालन की क्या स्थिति है?
0: पशुपालन का स्थिति उन लोग के चारा के लिए ठीक नहीं, इसलिए बारिश नहीं हो रहा है, चारा नहीं है, उसको चारा के लिए बहुत दिक्कत है। बारिश जब होता है तो हम लोग का जंगल में भी घास उगता है, हम लोग खेत जो करते हैं खेती में भी घास उगता है, तो उसको काट कर हम खिलाते हैं। तो अभी मान चलो हम लोग जो खेती करते हैं कुआं से या बोरिंग से, तो उससे थोड़ा बहुत जो है करते हैं आता हम लोग के गाँव में बिकने पोटा वाला, हम लोग उसी को
1: उपयोग
0: में ला रहे हैं।
1: कितने पशु है अभी आपके पास?
0: अभी पशु मेरे पास 5 है।
1: कितने गाय हैं आपके?
0: 2 गाय हैं और 2 बैल हैं, और उसके साथ है बछड़ा और बछड़ी है।
1: आप जैविक खाद घर में बनाते हैं?
0: हाँ, जैविक खाद घर में बनाते हैं। घर से थोड़ा सा हट

0: कर।
1: कैसे तैयार करते हैं आप जैविक खाद?
0: जैविक खाद को तैयार करने के लिए गोबर जो होता है गोबर को इस्तेमाल करते हैं, सिनवार को पत्ता उपयोग करते हैं, बांस जो बखार बोला जाता है उसका पत्ता, और मार्केट से केचुआ डालते हैं। इसी तरह
1: आप पशुओं का टीकाकरण करवाए हैं?
0: हाँ, टीकाकरण करवाए हैं।
1: अच्छा, कब कब आप टीका लगवाते हैं पशुओं में?
0: पशुओं में बीमारी उन लोग के खोरहा, चापका, अढ़ैया, ये अनेक प्रकार का बीमारी जो होता है इसका हम लोग वैक्सीन भी आता है।
1: अच्छा,
0: फिलहाल तो वैक्सीन लगवाए हैं।
1: खुरहा चपका रोग भी आप घरेलू उपचार क्या करते हैं?
0: खोरहा चपका में घरेलू उपचार हम लोग यही करते हैं, गर्म पानी करके उसको, सुसुम पानी जहाँ लगता है उसको धो करके उसमें हम लोग घरेलू उपचार मोबिल हो गया या फनेल के तेल हो गया, ये सब हम लोग लगाते हैं, घरेलू उपचार करते हैं।
1: आप थे पाटन प्रखंड के ग्राम सहदेवा जिला पलामू के सफल किसान शंकर कुमार मेहता। आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में अब बातें फव्वारा सिंचाई से लाभ की। किसान भाइयों, सिंचाई की विभिन्न विधियों में फव्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसको अपनाकर जल प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, और यह सिंचाई की उन्नत एवं आधुनिक विधि है। इस विधि में सिंचाई क्यारियों में न करके पाइपों एवं नोजलों के माध्यम से वर्षा के रूप में की जाती है। इस पद्धति में प्लास्टिक या एल्युमिनियम पाइपों को खेत में जाल बिछाकर ऊंचे नीचे रेतीले पहाड़ी और पथरीली किसी भी प्रकार की जमीन में सहजता से सिंचाई की जा सकती है। यह विधि जल संरक्षण के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने और भू संरक्षण में भी सहायक है, क्योंकि इस विधि से सिंचाई करते समय जल बहकर बाहर नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त क्यारी विधि की तुलना में फव्वारा सिंचाई पद्धति कई तरह से लाभकारी है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से क्यारियों में की गई सिंचाई की तुलना में 30-40% पानी की बचत होती है, और इस बचत का उपयोग उतना ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाने, भूमिगत जल स्तर सुदृढ़ करने, अधिक जल दोहन के कारणों से होने वाली हानि को भी रोका जा सकता है।
2: सतही विधि से सिंचाई के लिए क्यारी और नाली बनाने में लगने वाले श्रम, समय और व्यर्थ जमीन को बचाया जा सकता है। फव्वारा सिंचाई विधि अपनाने से भूमि को समतल करने में होने वाले समय और व्यर्थ जमीन को बचाया जा सकता है, क्योंकि इस विधि से उबड़ खाबड़ और ऊंचे नीचे सभी तरह के भू भागों में सिंचाई संभव है। रेतीली क्षेत्रों सतही विधि से सिंचाई करने पर अधिकांश जल पौधों की जड़ों की पहुँच से काफी बाहर और गहराई तक चला जाता है, जबकि फव्वारा सिंचाई की नियंत्रित पद्धति है।
1: इस विधि द्वारा सफल उत्पादन और फसल सघनता में वृद्धि और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार संभव है। फव्वारा संयंत्र को चालू करने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि सभी नोजल घूम नहीं रहा है, तो अवश्य इसमें कचरा फंसा हुआ हो सकता है, इसलिए आलपीन और सुई की नोक से नोजल को साफ कर लेना चाहिए।
2: यह भी सुनिश्चित कर लें कि नोजल द्वारा फेंका जाने वाला पानी यदि खेत से बाहर जा रहा है तो आखिरी पाइप को छोटा कर लें। सिंचाई के लिए पानी के पाइपों को सीधा लगाना चाहिए। राइजर पाइप जिस पर नोजल लगे होते हैं सदैव सीधे खड़े रहने चाहिए। चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में फव्वारा लगातार न चलाकर पानी बहने की स्थिति से पूर्व ही बंद कर देना चाहिए।
1: किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें फव्वारा सिंचाई से लाभ। किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब हमारा समय विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागनी कुमारी और
2: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
2: नमस्कार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम।

0: तमाम किसान भाइयों को रागनी कुमारी का नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, अब बातें हम कर लेते हैं मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन काफी उपयुक्त माना गया है। मधुमक्खी पालन आय का अतिरिक्त व्यवसाय भी है।
0: मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग है। मधुमक्खियाँ फूलों के रस को शहद में बदल देती है और उन्हें छत्तों में जमा करती है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है।
1: बिल्कुल, और मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है जो खुद के बनाए हुए मोम के छत्ते में संघ बनाकर रहता है, जिसमें एक रानी कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। एक छत्ते में इनकी संख्या लगभग 20,000 से 50,000 तक होती है। इनके छत्ते से प्राप्त शहद बहुत पौष्टिक भी होता है।
0: किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन आय और स्वरोजगार का सृजन में सहायक। बगैर अतिरिक्त खाद, बीज, सिंचाई और प्रबंध के मात्र मधुमक्खी के मौन वंश को फसलों के खेतों और मेड़ों पर रखने से कामेरी मधुमक्खी की परागण प्रक्रिया से फसल, सब्जी और फल उद्यान में 1.25 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी होती है।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश की जरूरत होती है। कम उपज वाले खेत से भी शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ खेती के किसी अन्य उद्यम से कोई ढांचागत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। मधुमक्खियाँ कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इस तरह वे सूर्यमुखी और विभिन्न फलों की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक होती है।
0: किसान भाइयों, शहद एक स्वादिष्ट और पोषक खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खी पालन किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा शुरू किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और बाजार में शहद और मोम की भारी मांग है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाकर हमारे किसान भाई बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मधुमक्खी पालन की, और अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक लोकगीत। गायक कलाकार है भारत सिंह भारती।

0: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, गायक कलाकार थे भारत सिंह भारती। अब आइए हम सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे नए पौध तैयारी की और किस प्रकार हम नए पौध तैयारी करें, कौन सी विधियां लगाएं जिससे हम अधिक से अधिक पौध उत्पादन करके और खेतों में उसे लगा सकें। और वो विधि है किसान भाइयों गुटी विधि, जिस पे विस्तृत जानकारी आज हमारे साथ साझा करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि गुटी विधि क्या है।
2: जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते हैं, जब हम लोगों को खासकर खेत में फलदार पौधे लगाने होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, या कहीं हम लोग देखते हैं कि अच्छी उन्नत क्वालिटी की प्रभेद आपके पास है तो आप उसके बीज से जो पौधा लगाते हैं वो उसके जैसा नहीं होता है
1: जी।
2: 5 वर्ष बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें वो गुण नहीं है
1: नहीं।
2: तो इस स्थिति से पार पाने के लिए असेक्सुअल विधि है, जिसमें हम लोग पौधे के किसी भी भाग को ले करके एक नए पौधे के रूप में उसको तैयार करते हैं
1: जी।
2: तो उसी का एक पार्ट है गुटी। गुटी का मुख्य रूप से हम लोग यहाँ नींबू, अमरूद, कटहल, अनार में प्रयोग करते हैं, काजू तथा तेजपत्ता जो है इसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पौधा बहुत कम समय में तैयार होता है खेत में लगने लायक। बीज से हम लोग लगाते हैं तो 2 से 3 वर्ष मतलब उसको बड़ा होने में लगता है
1: जी।
2: जबकि इस विधि से आप 6 से 7 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना होगा। किसी भी पौधे से यदि उसी के जैसा, उसी के गुण वाला

0: उसी की बढ़वार वाला यदि पौधा हम लोग तैयार करना चाहते हैं, खासकर नींबू, अमरूद, कटहल, काजू, अनार, तेजपत्ता, तो हम लोगों को गुटी विधि का चयन करना चाहिए। गुटी विधि को किसान भाई और जगह से मार्केटेज नाम देखेंगे, पॉट लेयरिंग नाम से भी जानते हैं, चाइनीज ईयर लेयरिंग भी इसको कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसी गुटी विधि का तरीका है।
1: अच्छा।
0: और नाम है
1: जी।
0: इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले स्वस्थ पौधे का चुनाव करना होगा, जिससे वो पौधा नए पौधा तैयार करना चाहते हैं। और इसका सबसे सही समय होता है जब मौसम में आर्द्रता होती है, मतलब गर्मी भी हो, बढ़वार भी आती है और जड़ बढ़ने का वैसा कंडीशन बेहतर रहता है,
1: हवा
0: में आर्द्रता रहती है, पानी की मात्रा रहती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम लोग समय हम लोग जान गए, पौधा भी हम लोग जान गए कि वैसे पौधा जो स्वस्थ हो और जिस जो वैरायटी हमको लेना है
1: जी।
0: जैसे यदि अमरूद में हम लोग को लेना है तो L49 या सरदार वैरायटी उसको बोलते हैं, इलाहाबाद सफेदा है, ललित है, इसका हम लोग चुनाव कर सकते हैं
1: जी।
0: तो जो सबसे बेहतर वैरायटी हो। इसके अलावा किसान भाई को कहीं अपना भी वैसा वैरायटी बेहतर हो जिसको लगता है कि इसका नया पौधा तैयार होना चाहिए, तो बीज से उसकी सही वैरायटी नहीं होती है तो उसको भी वो ए चाइनीज ईयर लेयरिंग या गुटी विधि से पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ये देखना होगा कि पेंसिल की मोटाई के आकार का वैसे पौधों को चुनाव करना होगा जिसमें खासकर आप जैसे जो पौधा मैं बताया, इसके अलावा और भी पौधे आप कर सकते हैं, जिसका कि ऊपर भाग, नया वाला भाग आप देखेंगे कि मुलायम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो जो जिसका ऊपर वाला मुलायम होता है वैसे पौधा का चुनाव कर सकते हैं, और जिसका ऊपर का छाल आसानी से छोड़ देता हो।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उसका हम लोग चुनाव कर सकते हैं।
1: ठीक है, चुनाव कर लिए उसके बाद
0: तो पेंसिल थिकनेस के आकार का हम लोग शाखा सिलेक्ट करेंगे और उस शाखा को हम लोग देखेंगे कि जहां से हम लोग को चुनाव करना है तो उसका जो बेस होता है, आधार होता है जहां से निकलता है, उसका हम लोग 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे पहला कट लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: गोलाकार में।
1: अच्छा।
0: और उसका दूसरा कट जो है मैंने 2.5 से 3 सेंटीमीटर के बाद दूसरा कट लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: कट लगाने का मेन मकसद है कि ये दोनों कट के बीच के जो छाल है उस छाल को हमको काट के हटा लेना है
1: जी, ऊपर से सिर्फ हटाना है,
0: ऊपर से हटा लेना है। और ये सावधानी देखना है,
1: 1-1 इंच,
0: हाँ, एक इंच से 1.25 इंच के आसपास में
1: जी
0: वो हटा लेंगे। और हम लोग को ये ध्यान देना है कि नीचे जब आप हटाएंगे तो उसके बाद एक हल्का पतला मांस जैसा रहता है, उस चीज को भी हम लोग चाकू के दूसरा तरफ से खुरच करके चाहेंगे कि हल्का हल्का करके वो हट जाए, या जूट का बोरा से भी उस चीज को हटा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: यदि वो नहीं हटेगा तो बाद में क्या होगा कि पौधा तैयार नहीं होगा और जो छाल जो है नया छाल बन करके एक दूसरे से जुट जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो हम लोग को इस चीज को रोकने के लिए उसको पूरी तरीका से हटना चाहिए। दूसरा एक चीज किसान भाइयों को मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि जब भी चाकू का यह प्रयोग करें तो उस चाकू को सैनिटाइज आपको कर लेना है।
1: अच्छा।
0: खासकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसे थोड़ा सा पोंछ लेंगे, जिससे किसी तरीका का रोग का प्रकोप नहीं होगा। ये मुख्य बात हुआ। दूसरा हुआ है कि जब हम लोग जहाँ गुटी बांध रहे हैं उसके अगल बगल के अवांछित जैसे जो निकलता है और छोटा शाखा, उस शाखा को हटा लें, उस पर ज़्यादा पत्ती नहीं रहने देना है, जिससे कि सही मात्रा में जो भोजन तैयार होता है वो इस पार्ट तक मिले। और आपको जब आगे कुछ उसमें हम लोग को गुटी बांधना है तो आसानी से आप उस शाखा को पहचान भी लेंगे, दो इसे दो काम हो रहा है। इसके बाद किसान भाइयों को जो हम लोग गुटी जहाँ पे बांधना है उसका चयन करने के बाद जो चिकनी मिट्टी जिसमें कोई भी कूड़ा कचरा जैसा नहीं हो उसको अच्छी तरीका से छान ले चलनी से, और

0: पूरा सड़ा हुआ गोबर उसमें मिलाए और उसको इतना गूथना है, इतना गूथना है कि घर में जो आटा रोटी बनने लायक होता है इस तरीका से हो जाए। यदि संभव हो तो उसको 8-10 दिन गड्ढा में करके छोड़ भी दें कि उससे गंध हट जाए। सड़न यदि कुछ रहता है तो सड़न को ज्यादा तेज करने के लिए हम लोग उसमें मिट्टी के जो हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं उसके अनुसार हम लोग पोटास खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: एक मुट्ठी के आसपास में यदि 10 kg के आसपास मिट्टी है, 10 kg गोबर है, तो दोनों को सम मात्रा में, बराबर मात्रा में लेंगे और 2 मुट्ठी के लगभग पोटास खाद का प्रयोग करेंगे।
1: अच्छा।
0: और जब उसको बीच में आप बोरा से ढक दीजिए, पूरा सड़न जब अच्छा से हो जाए, उससे गंध निकलना खत्म हो जाए, तो हमारा तैयार है। और यदि आपके पास कंपोस्ट पहले से है तब आप तुरंत मिट्टी में भी दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में मिक्स करके आटा जैसा गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। सावधानी ये रखना है कि ज़्यादा मिट्टी गीला नहीं होना चाहिए। या तो किसान भाई, बाजार में स्फेग्नम मॉस मिलता है, वो 300 से 500 रुपये kg मिलता है, उसको आप पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी सोख लेता है।
1: अच्छा।
0: तो हम लोगों को ये करना है कि उस मॉस को हम लोग रात भर पानी में डालेंगे, लेकिन जब सुबह प्रयोग करना है तो उस मॉस को पानी उसे निकाल लेंगे हाथ से दबा करके, और जो कटा हुआ भाग है उस जगह पे अपनी जरूरत के अनुसार आप जो मिट्टी का गीला मिट्टी बनाए थे उसको एक मुट्ठी में ले करके उसको ढकेंगे या स्फेग्नम मॉस लगा करके ढकेंगे। और उसको ढकने लायक जो उजला प्लास्टिक होता है, उजला प्लास्टिक से उसको ढकेंगे। ढकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भीतर में जो मिट्टी की नमी हमेशा बरकरार रहे और बाहर से जो कटा हुआ भाग है उसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं हो, उसको दोनों रोकने के लिए आर्द्रता भी बनी रहेगी तभी जड़ निकलेगा। और सुतली से बहुत टाइट करके दोनों तरफ बांध देंगे। दोनों तरफ बांधने का मुख्य उद्देश्य ये है कॉन्टामिनेशन को ही रोकना है और भीतर में आर्द्रता बना के रखना है। और एक कोशिश करना है कि जो हम लोग मिट्टी लगाए हैं वो दोनों कट वाले भाग को ढके रहे, ये नहीं कि कभी कभी करने में घसक जाता है। यदि ऊपर साइड से घसक जाता है तो जड़ तो कभी आएगा ही नहीं, नीचे साइड का यदि बाकी रहता है तो जड़ आने की भरपूर संभावना होती है, लेकिन ढके तो ज़्यादा बेहतर है, खासकर जब आप शुरुआत में कार्य कर रहे हैं तो ये। और इसके बाद जब किसान भाई देखेंगे, यदि किसी कारण से आप खेत में देख रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि बीच में पूरा गर्मी पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जिसमें एक गुट्टी बांधे हैं उसमें समय समय पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जो फवारा है
1: वो कर
0: उस तरीका से करते रहने से फायदा होता है। या फवारा नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई तो देखते हैं कि यदि जमीन सूखा हो गया है जिस पौधा में गुट्टी बांधे हैं तो वहाँ पे समय समय पे पानी देते रहना है। यदि नहीं देंगे तो गुट्टी सक्सेस नहीं होता है, बहुत कम सक्सेस,
1: जड़ नहीं निकल पाएगा,
0: रेशियो रह जाता है। तो मुख्य रूप से ये बात ध्यान में रखना है। और जब सारी परिस्थिति बेहतर रहती है तो 20 से 25 दिन में जड़ आपको निकलते हुए दिखने लगेगा। जब जड़ निकलते हुए दिखने लगा उसको घना होने के लिए छोड़ दीजिए और 15 दिन छोड़ दीजिए। और 15 दिन के बाद उस पौधे को यदि हमको अलग करना है तो हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे कि फिर से जो पत्ती वगैरह निकला है नया नया उस सबको छांटेंगे, बहुत कम पत्ती शाखा रहने देंगे, और जहाँ से हमको काट के अलग करना है उस जगह पे चाकू से थोड़ा सा कट करके छोड़ देंगे 5-7 दिन के लिए। बाद में दोबारा कट करके उसको पूरी तरीका से अलग करेंगे। अलग करने के बाद जिस प्लास्टिक से हम लोग उसको ढके थे उस प्लास्टिक को हटाएंगे और ट्यूब में जिस तरीका से हम लोग गोबर और मिट्टी का अनुपात बना करके ट्यूब को भरते हैं उस ट्यूब में फिर से जो ये जड़ निकला हुआ गुट्टी है इस गुट्टी को उसमें लगाएंगे और हल्का छाया वाले क्षेत्र में कुछ दिन के लिए रखेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे आप इसको थोड़ा थोड़ा धूप में लाते रहिए जिससे पौधा में हार्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा और हमारा पौधा लगने की स्थिति में, खेत में जाने की स्थिति में 2 से 3 महीने के बाद आसानी से हो जाता है।
1: जहाँ किसान भाइयों ये बातें हुई गुटी विधि से, जिससे आप नए पौधे की तैयारी कर सकते हैं और बेहतर मात्रा में आप नए पौध की तैयारी कर सकते हैं एक पौध से, और उसे अपने

0: जाए तो एकल फसल पद्धति की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
1: हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण जोत का आकार छोटा होता जा रहा है, साथ ही प्रति इकाई उत्पादन भी घट रहा है। एकल फसल पद्धति की अपेक्षा अंतर्वर्ती फसल पद्धति से मृदा स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में मदद मिलता है। अंतर्वर्ती फसल उत्पादन से किसान भाई अगर चाहें तो वर्ष भर आवश्यकता अनुसार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, आज का आधुनिक दौर जिसको मशीनीकरण का दौर कहा जाता है, इसमें यदि मशीनों का उपयोग कर अंतः फसल उत्पादन को अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर कम लागत में अधिक लाभ किया जा सकता है। इस पद्धति को अपनाने के कई लाभ भी हैं, जो आपको बता दें। अंतः फसल उत्पादन को अपनाने से एक साथ एक ही खेत में, एक ही मौसम में और एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ उत्पादन किया जा सकता है। इससे कम लागत प्रति इकाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।
1: ग्रामीण भाइयों, मृदा से नमी, पोषक तत्व, प्रकाश और खाली स्थान का समुचित उपयोग किया जा सकता है।
0: तेज वर्षा और तेज हवाओं के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, अंतः फसल उत्पादन को अपनाने से श्रम, पूंजी, पानी, उर्वरक इत्यादि को बचा कर लागत को कम कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा शोध में पाया गया है कि अंतः फसल उत्पादन से किसान वर्ष में कई बार आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: किसान भाइयों, कार्यक्रम में अब प्राथमिक कृषि पदार्थों का तत्कालीन बाजार मूल्य हम आपको बता दें। पलामू जिला में आज चना का मूल्य 7,200 रुपए से 7,400 रुपए प्रति क्विंटल और इसकी खुदरा बिक्री हुई 80 रुपए से 85 रुपए प्रति किलोग्राम।
0: चना दाल का मूल्य रहा 8,200 रुपए से 8,400 रुपए प्रति क्विंटल, खुदरा बिक्री हुई 90 से 92 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: और अरहर दाल का मूल्य रहा 16,000 रुपए से 16,200 रुपए प्रति क्विंटल और इसकी खुदरा बिक्री हुई 170 रुपए प्रति किलोग्राम। और मूंग दाल का दर रहा 11,000 रुपए से 11,500 रुपए प्रति क्विंटल और इसकी खुदरा बिक्री हुई 120 रुपए से 125 रुपए प्रति किलोग्राम। जी हाँ किसान भाइयों, ये हुई बातें प्राथमिक कृषि पदार्थों के मूल्यों की।
0: ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में अब विदा लेने से पहले आज की नसीहत। आज हम आपको बता दें कि खरपतवार फसल के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य को कम कर देते हैं,
1: इसलिए समय पर फसलों में अनावश्यक उगाए खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है।
0: इसी के साथ
1: रागनी कुमारी
0: और प्रतिमा वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी के बाद अब सीजीएल और सीडीपीओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट से मिली राहत, सरकार के आदेश पर लगाई रोक। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का लगाया आरोप। 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान। एचएससी के पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उप समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर हुई चर्चा। सीईओ ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा विशेष शिविर। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ड्रोमीटर स्थापित। 23 अगस्त को पलामू समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने मामले पर राज्य सरकार और जेपीएससी को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
1: एक तो फास्ट ट्रैक मोड पे इस बात को सुना जाएगा, इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जल्द से जल्द न्याय किया जाए। कोर्ट का ये मंतव्य है कि 15 सितंबर तक, जो अगली डेट ऑफ हियरिंग है, उसके पहले तक सरकार को ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपना जवाब दायर करे। कोर्ट ने बोला है कि अभी कोई टर्मिनेशन ऑर्डर्स अपॉइंटमेंट्स का जो हो चुका है उस पर पास नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे है।
0: इससे पहले कल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं और एक अन्य नियुक्ति को रद्द करने के सरकारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाई थी।

0: इधर छात्र संगठनों ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। छात्र आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो ने आज प्रेस वार्ता में सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर आगामी 24 अगस्त से रामगढ़ के नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान किया।
1: नेमरा से दिन सोमवार से हम लोग भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। कोर्ट में अपना कमजोर दलील दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, जो अगला तारीख है उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ियों को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार पर जनता और छात्रों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में धांधली का भंडाफोड़ होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एचसी के पुनरुद्धार के लिए गठित 6 सदस्यीय केंद्रीय संसदीय उप समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय उप संसदीय समिति के सदस्यों के बीच एचसी की वर्तमान परिस्थिति और इसके पुनरुद्धार से संबंधित भविष्य की कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने खान और खनिज संशोधन विधेयक को झारखंड जैसे राज्यों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि यह विधेयक राज्यों के हितों को मजबूत करने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
2: KMMDR बिल राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है, लाखों लाख लोगों को रोजगार देने वाला है, चाहे ट्रांसपोर्ट के रूप में, होटल के रूप में, और अवैध माइनिंग पे लगाम। झारखंड तेजी से बढ़ेगा क्योंकि झारखंड में ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है।
0: इधर प्रदेश कांग्रेस ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस विधेयक के विरोध में 27 अगस्त को जिला मुख्यालय में पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा।
3: खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 जो केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पारित की गई है, इसका मतलब है कि केंद्र की सरकार यहाँ सौतेला व्यवहार कर रही है, यहाँ की हितों के साथ अनदेखी कर रही है। तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे और इसका पहला चरण हम लोगों ने 27 अगस्त से प्रारंभ किया है।
0: राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 25 अगस्त को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SIR के तहत कल से मतदान केंद्रों में लगने वाले विशेष शिविर को सफल बनाने की अपील की है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से इस विशेष शिविर में पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।
4: आने वाला शनिवार रविवार को सभी पोलिंग स्टेशन में एक विशेष कैंप आयोजन किया जा रहा है ताकि झारखंड का सभी पात्र भारत नागरिक, इनका उम्र 1 अक्टूबर 2026 में 18 हो रहा है, वो अपने फॉर्म 6 भरवा के अपने नाम का निबंधन कर लें। साथ ही साथ आपका परिवार का नहीं, मतलब आपका नाम नजदीकी बूथ

0: दूर होगा तो भी आप फॉर्म 8 भरवा के अपने नजदीकी बूथ में आपका नाम लेकर आए।
1: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ कल चांडिल पुरुलिया रेल मार्ग पर नवनिर्मित पितकी रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ओवरब्रिज के चालू होने से यात्रियों का समय बचेगा और क्षेत्र में आवागमन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ कल चांडिल पुरुलिया रेल मार्ग पर नवनिर्मित पितकी रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ओवरब्रिज के चालू होने से यात्रियों का समय बचेगा और क्षेत्र में आवागमन तथा व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

0: विशेषताओं के अध्ययन तथा उच्च रेजोल्यूशन वर्षा मापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 25 अगस्त तक राज्य के अनेक स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी के बाद अब सीजीएल और सीडीपीओ पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भी हाईकोर्ट से मिली राहत, सरकार के आदेश पर लगाई रोक। छात्र संगठनों ने राज्य सरकार पर न्यायालय में मजबूती से पक्ष नहीं रखने का लगाया आरोप। 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने का ऐलान। एचएससी के पुनरुद्धार के लिए गठित संसदीय उप समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, वर्तमान स्थिति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर हुई चर्चा। सीईओ ने एसआईआर के विशेष शिविर को लेकर की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। 22 और 23 अगस्त को सभी बूथों पर लगेगा विशेष शिविर। और रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में अत्याधुनिक वर्षा मापक उपकरण डिस्ट्रोमीटर स्थापित। 23 अगस्त को पलामू समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करजन ग्राउंड हजारीबाग में झंडा तोलन कर देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान इन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया।
2: पीएम जनमन योजना अंतर्गत 143 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास के अंतर्गत 2741 आवासों को पूर्ण करा लिया गया है। जिले में 77 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण और स्वच्छ भारत में 106 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण कराई जा रही है।
1: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हजारीबाग में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाला गया। स्थानीय हरीश श्रीवास्तव बताते हैं,
3: हर घर तिरंगा तो ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं है, हमारी कुर्बानियों का प्रतीक, हमारी एकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उसी के मद्देनजर हजारों हजार युवाओं ने झंडा थाम के पूरे शहर को झंडामय कर दिया।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ लगेगा। आयोजन में 7 जिला से लगभग 1288 खिलाड़ी पहुंचेंगे। नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा बताते हैं,
4: 29, 30, 31 अगस्त को हजारीबाग में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पूरे प्रमंडल से 1233 हमारे खिलाड़ी आने वाले हैं। कुल 8.5 लाख रुपए का हम नगद पुरस्कार देने वाले हैं। 6 खेलों से इसका शुरुआत कर रहे हैं।
1: रक्षाबंधन के अवसर पर भारतीय डाक सेवा बहनों के लिए विशेष सुविधा लेकर आई है।
5: सभी डाकघरों पर स्पेशल राखी इनवेलप उपलब्ध कराया जा रहा है। यह एक टेम्पर प्रूफ वाटर प्रूफ राखी इनवेलप भारतीय डाक विभाग के द्वारा बनाया गया है, जिसका मूल्य मात्र 10 रुपए है। सभी मुख्य डाकघरों, उप डाकघरों में और ग्रामीण क्षेत्र के शाखा डाकघरों में भी उपलब्ध है।
1: झारखंड में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति को रद्द करने के राज्य कैबिनेट के फैसले पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद छात्रों में झारखंड सरकार के खिलाफ असंतोष गहरा रहा है। जेपीएससी जेसीएल रिफॉर्म मंच के सदस्य विनय मेहता बताते हैं,
6: जो काम कर रहे थे कर्मी उसको भगा दिया, लेकिन आज हाईकोर्ट में फिर से उसको स्टे लगा दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई तैयारी

0: नहीं था, आपके पास कोई इनपुट नहीं था, तो ये गलत है। हम लोग का मैन था जैसे सीजीएल, तो इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इसमें आर पार की लड़ाई हम लोग वहाँ भी घोषणा किए थे और पुनः हजारीबाग में घोषणा करते हैं। इस एग्जाम को अगर छेड़ा गया तो हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि सर आप ये समझिए, जेएसएससी सीजीएल पूरे भारत में सबसे बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं। 11 साल के बाद ये एग्जाम कम्प्लीट होता है। नेपाल में 135 में से 120 आंसर को मैच किया था। आपका नियामतपुर में 120 लोग पढ़ने गए उसको दबाया गया। आपका बोकारो में 15 लोग पढ़ने गया, मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ। अभय तिवारी आपका जो TDPL का मार्केटिंग मैनेजर है वो सेकंड टॉपर जेएसएससी सीजीएल का, पीजीटी का फर्स्ट टॉपर।
1: आने वाला दिन झारखंड सरकार के लिए चुनौती भरा होगा, जहां एक ओर सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है तो दूसरी ओर छात्रों को संतुष्ट करना भी है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
2: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं वक्त की आवाज फिल्म के इस नगमे से। आवाजें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं दीवर और संगीतकार बप्पी।

हत्या फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार थे इंदीवर और संगीतकार बप्पी लहरी। आज के एक रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाज़ों में कुछ फिल्मी गीत। अगला गीत आइए सुनते हैं, दिल जला फिल्म से। आवाज़ें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की, नामानिगार हैं इंदीवर और मौसिकार बप्पी लाहिरी।

हिम्मत और मेहनत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था और संगीत से संवारा था बप्पी लहरी ने। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है, चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद

हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में एमबीए जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं, जैसे कि बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है जो कई तरह की बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए दवाओं और दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। बी फार्मा स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए एम फार्मा कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का फार्म डी पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय एमफिल एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो एमबीबीएस के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट क्षेत्र, स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार एमबीबीएस नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं

0: एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं। और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान। रोजगार से जुड़ी बातें में आज बातें हो रही थी मेडिकल के क्षेत्र में करियर कैसे बनाएं। इस विषय पर संकलन एवं वाचन मीनाक्षी।

आप मुझे अच्छे लगने लगे, फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और साथियों की। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। आरजू फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार

राधा का संगम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, हसरत जयपुरी के बोल थे और अनु मलिक का संगीत था। इसी नगमे के साथ ही अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। पेश खदमत है कव्वाली का प्रोग्राम महफिल। फनकार हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान और हमनवा। कलाम शायर हैं अनवर फरुखाबादी।

अब्दुल रब हैरान का लिखा कलाम अभी आप सुन रहे थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान और हम नवा की आवाज़ों में। इसी के साथ महफिल कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैंड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10

0: इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने

0: क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा, जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्व

0: महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हो। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस

0: महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना

0: Essential relief material, including dry food and polythene sheets, are also being distributed. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in the opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. In the BWF Badminton World Championships, India's Trisha Jolly and Gayatri Gopichand stormed into the women's double semi-finals and assured the country of a coveted medal at the prestigious championship. However, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Wei Kang and Wang Chang in the quarterfinals today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी तरक्की और वसाइल की हथियारकारी के मुतालिक तशवीश के दौरान तरक्की के लिए एक दरख्शां आलमी मकाम के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने एक बार फिर हर एक गैर कानूनी इमिग्रेंट को मुल्क से बाहर निकालने के हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। हुकूमत का कहना है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा ज़खीरा मौजूद है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने 62,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने के साथ मोबाइल फोन मैनुफैक्चरिंग की स्कीम का इफ्तिताह किया ताकि मुल्क में सप्लाई की चेन और आलमी मुकाबला जाती सलाहियत को फरोग दिया जा सके। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सबब रूनुमा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया और हॉकी में FIH आलमी कप के सेकंड पूल के मरहले के पहले मैच में भारत की ख्वातीन की टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को पूरी दुनिया में तरक्की के एक दरख्शां मकाम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में तरक्की के मुतालिक और वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के बारे में तशवीश पाई जाती है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत तरक्की की रफ्तार को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात किए जाने का सिलसिला जारी रखेगा और इस्लाहात उनकी हुकूमत का अज़्म है। उन्होंने कहा कि भारत पिछली हुकूमतों के दौरान पैदावार से वाबस्ता सजा के मॉडल से हटकर अब पैदावार से वाबस्ता तरगीबात में बदल चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमतों की ये पॉलिसी थी कि लोगों को महरूम रखा जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी हुकूमत के आगे हाथ फैलाएं। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों को लाइसेंस राज बेरोज़गारी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था जबकि उनकी हुकूमत का पैदावार से वाबस्ता तरगीबाती मॉडल मौके तख्लीक करता है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत सिर्फ जाब्ते ही तब्दील नहीं कर रही है बल्कि वो जाब्तों की पूरी पॉलिसी ही तब्दील कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत हमेशा एक मुश्तरका मुस्तकबिल के जज्बे में यकीन रखता है। उन्होंने कहा कि यही सबब है कि भारत की G20 की सदारत के दौरान उसका रहनुमा उसूल एक कुर्राए अर्ज एक ख़ानदान एक मुस्तकबिल था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दुनिया ने कई नशेबो फराज देखे हैं और इन तजर्बात ने एक बात को बहुत वाज़ेह कर दिया है कि हर मुल्क का मुस्तकबिल दूसरे मुल्कों के मुस्तकबिल से वाबस्ता है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन अनुभवों ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, कोई चाहे या न चाहे हर देश का भविष्य उसका फ्यूचर एक दूसरे से जुड़ा हुआ

0: ही है, आइसोलेशन में कुछ संभव नहीं है। इसलिए शेयर्ड फ्यूचर्स की ये थीम आज और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है और भारत तो हमेशा से इसी भावना को लेकर चला है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 20 खलाई स्टार्टअप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान CEO और बानियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने जोर दिया कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खलाई टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने वाजह किया कि मुल्क का खलाई शोबा आलमी सतह के बासलाहियत अफराद, कंपनियों और सरमायाकारी को रागिब कर सकता है। उन्होंने तजवीज किया कि एक ऐसा इको निज़ाम और माहौल वजा करना चाहिए जहां जब भी दुनिया खला के बारे में सोचे तो वो भारत की तरफ देखे। खलाई सनत और दीगर समाजी तरक्याती शोबों के दरमियान वसी तर तआवुन पर जोर देते हुए वजीर आजम ने खला के लिए नौजवान जहनों में जस्तजू और दिलचस्पी पैदा करने की गरज से अटल टिंकरिंग लैब के साथ ज्यादा से ज्यादा शराकत दारी की तरगीब दिलाई। जनाब मोदी ने नए दौर में खलाई शोबे के कायदीन को हौसला दिखाने और क्यादत करने के लिए मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि इस शोबे ने जो एतमाद जाहिर किया है उसने इस विजन को मुस्तहकम किया है जिसके साथ खलाई शोबे को निजी शराकत के लिए खोला गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। तकरीब के बाद जवानों से खिताब करते हुए जनाब शाह ने वादे किया कि साबिक वज़राए आला को SSB की साबिका तकारीब में मदऊ किया गया था लेकिन उन्होंने शिरकत न करने का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि जब से शुभिंदु अधिकारी वजीर आला बने हैं सरहदी तहफ्फुज़ के लिए मुकम्मल तआवुन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम बाकायदा कागजात पहुंचने से कबल ही कामों को फोन का कॉल के जरिए हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी मानदा 19 एकड़ मतलूबा आराजी भी सुपुर्द की जा रही है। शाह ने बताया कि मगरबी बंगाल में मामला से मुतालिक वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दरअंदाजी को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी से की गई बार बार की दरखास्तों के बावजूद वादों के मुताबिक जमीन फराहम नहीं की गई।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: इस मौके पर SSB के बहुत से कैंपों के लिए संगे बुनियाद भी रखा गया जिनके लिए तकरीबन 179 करोड़ रुपए मालियत के कामों का अहाता किया गया है। वजीर दाखिला ने बताया कि जब से मरकज में BJP हुकूमत इख्तदार में आई है सरहदी तहफ्फुज के लिए जिम्मेदारी अमले की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने वादे किया कि SSB नेपाल और भूटान जैसे मुल्कों के साथ खुली हुई सरहदों की हिफाजत करने का चैलेंज से पुरकाम अंजाम दे रही है। उन्होंने इसे दुश्वार तरीन फराइज में से एक करार दिया। मजीद बरआ उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत ने खित्ते में निगरानी में इजाफा किया है। जनाब शाह ने यादा किया कि ममता बनर्जी ने वहां सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए मतलूबा आराजी फराहम नहीं की थी, शुभिंदु अधिकारी ने इसे फराहम किया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अंदाजे से कम पैदावार के बावजूद घरेलू मांग से निमटने के लिए मुल्क में शकर का खातिरखा जखीरा मौजूद है। शकर की कीमत में हालिया इजाफे के तनाजुर में हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं ताकि शकर की खातिरखा दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सारिफीन के लिए मुस्तहकम कीमतों को बरकरार रखा जा सके। सारिफीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत का कहना है कि वो सूरत हाल पर कली नजर रख रही है। शकर की कीमत में हालिया कुछ हफ्तों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को शकर की कीमत 48 रुपये फ़ी किलोग्राम थी जो कल बढ़कर तकरीबन 55 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। वजारत ने कहा कि शकर की कीमत में हालिया इजाफे की वजह इथेनॉल की पैदावार के लिए शकर की मुंतकली को करार देना मुनासिब नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हुकूमत शकर की फराहमी बढ़ाने के लिए जखीरा अंदोजी के अमल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वजारत ने मुशाहदा किया है कि कुछ शुगर मिलों और ताजरों की सट्टेबाजी और जखीरा अंदोजी के अमल ने हालिया दिनों कीमतों के इजाफे में अहम रोल अदा किया है। حکومت نے اس سال 1 اگست سے 30 نومبر تک ملک بھر کے شوگر ڈیلروں کے

0: 400 टन शकर की जखीरा अंदोजी की हद मुकर्रर कर दी है। इसके अलावा थोक सार्फीन को यकुम सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा शकर स्टॉक करने की इजाजत नहीं होगी। रियासतों और शुगर मिलों को 15 अक्टूबर से क्रशिंग का अमल शुरू करने का मशवरा दिया गया है। इस कदम से अक्टूबर में शकर की पैदावार मामूल के 3 से 4 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में शकर की दस्तियाबी में मजीद बेहतरी आएगी। दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और मालूमाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS का आगाज किया। मरकजी काबीना ने इस स्कीम को पिछले महीने मंजूरी दी थी, जिसके लिए 62,500 करोड़ रुपए की बजट जाती रकम मुख्तस की गई है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णो ने कहा कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2026 से नाफिज हो गई है। इस स्कीम की मुद्दत 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल के लिए होगी। इस स्कीम का मकसद दायरा कार में मजीद इजाफा करके मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को और बेहतर करके नीज अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को मजबूत बनाकर आलमी मुकाबला आरआई में इजाफा करना है। ये स्कीम भारतीय मोबाइल ब्रांड्स तैयार करेगी और रोजगार भी वजा करेगी। MPMS के दो हदफी जुमरे हैं, जिनमें मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सहूलतें फराहम करना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांड्स की मदद करना शामिल है। ये आकाशवाणी है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने आज मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया। बिलखसूस कौमी राजधानी पर तवज्जो मरकूज की गई। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने मुत्तला किया कि जनाब नड्डा ने कौमी सतह पर निगरानी और वबा की तहकीक से मुतालिक सूरत हाल, IL और SARI रुझानात, जांच लेबोरेटरी की निगरानी और हिफ्जान सेहत की सहूलियात की तैयारियों का जायजा लिया, ताकि मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों का बंदोबस्त किया जा सके। मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने लगातार निगरानी, वसी तौर पर नजर रखने और सरगर्म तौर पर तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें इन्फ्लुएंजा के रुझानात पर करीबी नजर रखना शामिल है। उन्होंने अवामी बेदारी और रोकथाम से मुतालिक तरीक़ाकार, जिसमें साफ निजाम तनफ्फुस शामिल है, पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर और सीनियर BJP लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के नई दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर एहतजाज करने पर तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये एहतजाज न तलबा के मफाद के लिए है, न ही इंसाफ के लिए है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस पार्टी की सियासी मायूसी की और जनाब गांधी के मीडिया की तवज्जो हासिल करने की शदीद ख्वाहिश की एक अलामत है। जनाब नड्डा ने कहा कि अदालत आलिया ने पहले ही 20 जुलाई के वाकये का नोटिस लिया है और साबिक जज की सरपरस्ती में 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी कायम की है।
2: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं।
1: मरकजी वजीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत एक मजाहिम भरोसेमंद इख्तिरात पर मबनी बाख्तियार और सबकी शमूलियत वाले डिजिटल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद रखता है, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के तसव्वुर से रहनुमाई मिलती है। वो पुणे में आज ब्रिक्स ममालिक के वज़राए मवासलात की 12वीं मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए मवासलात और सीनियर नुमाइंदों ने इत्तिलाआत और मवासलाती टेक्नोलॉजीज, डिजिटल तब्दीलियों, इख्तिराआत और मज़ाहिम डिजिटल बुनियादी ढांचे में तआवुन को मजबूत करने के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और मॉरिशस अपनी तवानाई की शराकत दारी को रिवायती पेट्रोलियम मसनूआत से आगे बढ़ाकर साफ और पायदार ईंधन तक वसत देने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई का तआवुन मुस्तकबिल में तवानाई की यकीनी फराहमी और साफ तरीन ईंधन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगा और ये पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी मौजूदा शराकत दारी पर तामीर किया जाएगा। حکومت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارتی ملاح برادری کی بہبود اور سلامتی بھارت کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

यहां आरा आया सावन झूम के और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थीं और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।

0: दोस्तों 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकू कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।
1: हाँ।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का नमस्कार।

ताजमहल फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार रोशन।

मिलन फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं मुकेश और लता मंगेशकर की। गीत संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं उमरा जान फिल्म से। आवाज़ आशा भोसले की है, नगमा निगार हैं शहरियार और मौसीकार खयाम।

और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की अगली पेशकश है प्रेम पुजारी फिल्म से। गाया है किशोर कुमार ने, नीरज ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है SD वर्मन ने।

देश परदेश फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ किशोर कुमार की थी। गीत लिखा था अमित खन्ना ने और इसकी तर्ज बनाई थी राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की है। राजा मेहदी अली खान ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है मदन मोहन।

जहां आरा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज तलत महमूद की थी। राजेंद्र किशन ने इस गीत को लिखा था और संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और यह है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म वो कौन थी से। आवाज लता मंगेशकर की है। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत है।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में विकास और संसाधनों को लेकर कई चिंताओं के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विकास के उज्जवल उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। नई दिल्ली में आज शाम इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड्स लीडर फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत विकास की गति बनाए रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त है। पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान

0: Opening match of the second pool phase of the AFIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is underway. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. India trail Netherlands 0-1 at half-time. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे अपने कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।